हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी

0: पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: सोना सिर्फ ज़ेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामी पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शरायत जवाबित लागू हैं।
2: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना द यो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुनो द्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनीवी द्वसास की वरकवल महेरवई زکه هم دغه ساس کی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राति जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
7: जी हा, 3135525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मजमंदा सा सवाल करण समरन मुआजन ते ईरान खिलाफ़ जंग जो खात्मो शामिल आहिनि।

0: पाकिस्तान पारां अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते सख़्त ॻण ते ज़ाहिर नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान पहिरियों मुल्क हो जंहिं अफ़गान ॿाहिरां लाइ पंहिंजा दरवाज़ा खोलिया। अफ़गानिस्तान में जटादार अमन सलामती ऐं इस्तक़ाम लाइ लाॻीतो ध्यानु ज़रूरी आहे। तालिबान मां उमेद हुई त उहे पंहिंजे वाइदनि जी पासदारी कंदा। न्यूयॉर्क में OIC जे अफ़गानिस्तान बाबति राबता ग्रुप खे ख़िताब कंदे इसहाक़ डार चयो त अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि गुरूअनि जी मौजूदगी ते ॻणती आहे। गुज़िरियल हफ़्ते क्वाड में आपघाती धमाके में 24 पाकिस्तानी शहीद थिया। तालिबान दहशतगर्दी जो मुकमल ख़ात्मो यकीनी बणाए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो एं पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी ते

0: टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
4: जी हा, 2315-2575-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर्द पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारे हो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद
6: अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-42-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी जी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो जी एफ एम 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

लाड़काने में हथियारबंदन की कार से फायरिंग पी पुट समेत पंज जणा कतल लाहौरी काड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे कतल कयो मकतूल के वारसन जो चवण है असाजो पेंजी ही बिरादरी के मानू सा पुरानो जमीनी तकरार है उन्होंने असाजे चार जणन के कतल किया है इंसाफ किया वे।

0: न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो के खात्मे माओ ए बार जी सेहत समेत मुख्तलिफ शोबन में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वजीर आजम पाकिस्तान मां पोलियो के मुकमल खात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरिजायो। बिल गेट्स वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान के पोलियो खात्मे लाइ कोशिशन की वाखाण कई। भारत वलारियल कश्मीर में मजहबी सुञाणप के नुकसान रसायण की कोशिश कर रो है। नाले मातर छापन के आड़ में मासूम कश्मीर जो कतलेआम थी रो है। नायब वजीर आजम इसाक डार जो कश्मीर बाबत ओआईसी के राबता ग्रुप के इजलास के खिताब। इसाक डार वलारियल कश्मीर में साफिन ए नौजवान के निशानो बनाया पो वे। वलारियल कश्मीर में हुरियत अॻवाणनि समेत भी सियासी क्यादत नजरबंद है। विच ओभर में जंग के खात्मे की उम्मीद। गडियल कौम के जनरल असेंबली इजलास दौरान ईरान ए अमेरिकी वफदन के विच में टे कलाक डिघी मुलाकात। ईरान नाफ़्ता हर्मुज़ खोलने लाइ टे शर्त रखी छड़िया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण है त ईरानी परडेही वजीर अब्बास राकी के अमेरिकी खसूसी नुमाइंदे से मुलाकात की है। आ मुलाकात सुठी रही। जल्द ही ईरानी से एक बी मुलाकात तय है। ईरान के सामू बदग आन जन में एक इंतहाई खराब है। ईरान के मुफाद में है तो वह कें मुहिदे ते पहुंचे। ईरानी मीडिया मूजिब अमेरिकी दरख्वास्त वफदन में मुलाकात थी। अब्बास राकी अपने हर्मुज खोलण बाबत शर्त अमेरिकी नुमाइंदे आडो रखी छड़ा। ईरानी शर्तन में अमेरिकी नाकाबंदी खत्म करण मजमंद सा बहाल करण ए समूरन मुआवजन ते ईरान खिलाफ जंग जो खात्मो शामिल आहिनि। पाक फौज कुरम सेक्टर मां फितनाइल खारजन मुल्क में दाखिल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब नाकामी सबबि अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सिस जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो। पाकिस्तान सऊदी तयारी सलामती मुक़दस हंधनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के कौमी डींहं के मौके ते चयो त हुसैन के मके ते हमले की मज़म्मत कयूं था। हुरमिन शरीफ की सलामती के को भी खतरो समूरी दुनिया के मुसलमान के जज़्बन के छियो रसाए थो। मंज़ूराबाद में गोठ ज़िमी वट कराची खां दादू तरफ वींदड़ तेज़ रफ़्तार वेन कल्टी औरत नायला फोत अठ ॼणा ज़ख़्मी। घोड़ाबारीअ में कुकड़ियुनि सां भरियल तेज़ रफ़्तार मज़दा वाह में किरी पई। हादसे में अनवर जोखियो ऐं अहमद जोखियो हयाती विञाए वेठा। चार ॼणा ज़ख़्मी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
4: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली।
3: आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है। और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैन ॿुइनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
11: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
12: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
13: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
12: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
13: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
12: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
13: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
12: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
14: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
15: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
14: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
15: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
14: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
15: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
15: 0331-2525-786।
14: जी हा, 2315-2525-786।
15: GAFM रेडियो नेटवर्क,
14: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाओं में धूप की तरह, जिस्म में रूह की तरह, गुजरे दिमाग से याद तेरी लगातार लहू की तरह, अब खाए जाए ये दरो दीवार मुझे किसी भूख की तरह, तेरे बिना नहीं घर भी कर, अकेले महसूस ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर वक्त और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला, तू है।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब

0: रोज़ानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस: दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक, मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोटकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस: अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग: सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट: असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस: मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस: टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
6: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
7: Matli ke ho to awaz bhi matli ki hai.
0: Sunte raho GFM 90.4.

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: गुलाम मारजी वया एक औरत जख्मी वारसन जो चवण है तो पैं ही बिरादरी के मानू जमीनी तकरार तां चैन जणन के कतल कयो आहे. SSP लाड़काड़न जो चवण है तो बिन धुरिन पंहिंजे बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि. IG सिंध जावेद आलम ओडो वाके जो नोटिस वठी IG ऐं SSP लाड़काणे खां रिपोर्ट तलब कई आहे.

रुस्तम भरसां महर जतोई धुरियुनि में तकरार सां ॿ ॼणा मारिजी विया। फायरिंग में हज़ारू जतोई ऐं मुर्तज़ा महर मारिजी विया। वाजिद जतोई ज़ख़्मी, लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन में अलादी मस्जिद वेझो फायरिंग, हिकु ॼणो मारिजी वियो। मक़तूल जी सुञाणप 30 वरनि जे मोहम्मद शाह थी आहे। लाश अस्पताल मुंतकिल। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाक़ात थी आहे। पोलियो जे ख़ात्मे, माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल ख़ात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरिजायो। बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई। भारत वलारियल कश्मीर में मज़हबी सुञाणप खे नुक़सान रसाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। नाले मातर छापनि जी आड़ में मासूम कश्मीरनि जो क़त्लेआम थी रहियो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो कश्मीर बाबति OIC जे राबता ग्रुप जे इजलास खे ख़िताब। इसहाक़ डार चयो आहे त वलारियल कश्मीर में साफ़िन ऐं नौजवाननि खे निशानो बणायो पियो वञे। वलारियल कश्मीर में उहिड़े अॻवाणनि समेत ॿिए सियासी क़यादत नज़रबंद आहे। विच ओभर मां जंग जे ख़ात्मे जी उमीद। गॾियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली इजलास दौरान ईरान ऐं अमरीकी वफ़दनि विच में 3 कलाक डिघी मुलाक़ात। ईरान अबन हर्मुज खोलण लाइ 3 शर्त रखी छॾिया। अमरीकी सदर ट्रंप जो चवण आहे त ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राख़्ज़ी जी अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदे सां मुलाक़ात थी आहे। मुलाक़ात सुठी रही आहे। जल्द ई ईरानियुनि सां हिकु ॿी मुलाक़ात तय आहे। ईरान जे साम्हूं ॿ दग आहिनि जिन मां हिकु इंतिहाई ख़राब आहे। ईरान जे मुफ़ाद में आहे त उहो कंहिं मुआदे ते पहुचे। ईरानी मीडिया मूजिबि अमेरिकी दरख़्वास्त ते वफ़दनि में मुलाक़ात थी। अब्बास राख़्ज़ी अपना हर्मुज़ खोलण बाबति शर्त अमेरिकी नुमाइंदो आॾो रखी छॾिया आहिनि। ईरानी शर्तनि में अमेरिकी नाकाबंदी ख़तम करण, मंदमंद असासा बहाल करण ऐं समूरनि मुआज़नि ते ईरान ख़िलाफ़ जंग जो ख़ात्मो शामिल आहिनि। पाक फ़ौज कुरम सेक्टर मां फितना खारिजनि मुल्क में दाख़िल थियण जी

0: ॿुड़ी 347 ॿटी 41 200
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
0: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
0: जी हा, 3135525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: धर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयाव निवी दुनिया पलोर रवानवी। خود پولیو رنز دا کدمونو درولی هم شدی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول ماهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کز زیادوی او دا هغی دا خوبون والوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 0347-3241-230।
6: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जी पंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन आई मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड आई MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
5: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% आई घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस

0: आंटी सां चितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती चित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो जी एफ एम 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: लाड़काने में हथियारबंदन की कार से फायरिंग बिन भारन सुधो चार जणा कतल लाहौरी बाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे जमीनी तकरार तां चयन जणन के कतल कयो पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावा आयो है संदस भाव मंसूर कोकर अली शेर कोकर कार ड्राइवर मारजी वया एक औरत जख्मी वारसन जो चवण है तो पेंजे ही बिरादरी के मानू जमीनी तकरार तां चयन जणन के कतल कयो है SSP लाड़काने जो चवण है त बई धुरियो एक पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि. वॾे वज़ीर सैद बिरादरी शाह पारां वाके जो नोटिस आहे जी सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती आहे. जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो आहे. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पारां वलारियल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि जी मज़म्मत. इसहाक़ डार चयो आहे त वलारियल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे. आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल कश्मीरियुनि सां कयल वायदा पूरा करे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दनि जे ग्रुपनि ते ॻणती आहे. अफ़गान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ दहशतगर्दीअ लाइ इस्तेमाल न थियण ॾिनी वेंदी. बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन रेतली फितना टे तहत जारी आहे. सिक्योरिटी फोर्सेज जे तुर्बत में ऑपरेशन दौरान फितना हिन्दुस्तान जा ब दहशतगर्द मारिजी विया. फरार थियल दहशतगर्दनि जी ॻोल्हा सर्च ऑपरेशन तेज़. पाक फौज क्रम सेक्टर मां फितना खारिजी मुल्क में दाखिल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी. अफ़गान तालिबान पोस्टू छॾे फरार थी विया. सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब नाकामी सबब अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई. सिक्योरिटी फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो. पाकिस्तान सऊदी अरब सां ख़ुदमुख़्तियारी सलामती ऐं मुक़दस हंधनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सऊदी अरब जे क़ौमी ॾींहं जे मौक़े ते चयो त हुसैन जे मके ते हमले जी मज़म्मत कयूं था. हुरमन शरीफ़ जी सलामतीअ खे को बि ख़तरो समूरी दुनिया जे मुसलमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसाए थो. वरे वज़ीर सैद मुरादरी शाह सां एशियाई तरक़ियाती बैंक जे कंट्री डायरेक्टर जी मुलाक़ात. तालीम ट्रांसपोर्ट सिहत बहिराणियुनि जे तालीम तरक़ी डिजिटल मनसूबनि ते ख़्यालनि जी ॾेढ वरिती वई. वॾे वज़ीर सैद मुरादरी शाह चयो आहे त हर ॿार खे महफ़ूज़ जदीद ऐं मयारी तालीमी सहूलियतूं फराहम करण जो अज़म आहे. सिंध हुकूमत एशियाई तरक़ियाती बैंक सां वहिंवारी वधीक मज़बूत बणाईंदी. रुस्तम भरसां महर जतोई धुरियुनि में तकरार तां ॿ ॼणा मारिजी विया. फायरिंग में हज़ारो जतोई ऐं मुर्तज़ा महर मारिजी विया. वाजिद जतोई ज़ख़्मी, लाश अस्पताल मुंतक़िल. कराची जे इलाइक़े औरंगी टाउन में अलहुदा मस्जिद वेझो फायरिंग हिकु ॼणो मारिजी वियो. मक़तूल जी सुञाणप 30 वरनि जे मोहम्मद शाह थी आहे. लाश अस्पताल मुंतक़िल. न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां बिल गेट्स जी मुलाक़ात. पोलियो जे ख़ात्मे माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं. वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल ख़ात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरिजायो. बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई. रतो देरो भरिसां ॿ मासूम ॿारड़ियूं मच्छी जे तालाब में ॿुॾी फोत थी वयूं. घोटु वॾा घुसण में 5 वरनि जी नूरंदा ऐं 4 वरनि जी अमीरा घुसण रांदि खेॾण दौरान तलाउ में किरी ॿुॾी फोत थी वई. नओं दंबालो जे कासिम लुंड कॉलोनीअ में घर मां पीसन जो लाश हथायो आहे. पुलिस जो चवण आहे त 65 वरनि जे दिलबर राजपूत जो केतिरा ई ॾींहं पुराणो लाश मिलियो आहे. वधीक जांच कई पई. पीर जो गोट भरसा सहतार बरादरी के बिंदुरी में छेड़ो थो एक्वी जणा रतो रत गोठ माली सहता में जमीन की मालिकता धुरिन में जेड़ो थो है लठू ए कुआणियों लगण सबब बिन्हीं धुरिन जा पंज औरतू समेत एक्वी जणा जख्मी थी मुकाबला अस्पताल में
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे हुजे या मेडिकल वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
6: जी हा 3135525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद तो माजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो माजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सिंधु तंदर तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनको मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम। गुरुकुल दुआओं के संबंध है, चाहतों की बारिश और आजवल खजानों के साथ दुआएं पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नींद से जागते समय से आसमात, जिंदगी से मौत के सांस तार तक, से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन या रब्बुल आलमीन। जी आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी।

और बातें भी जनाब इस तरह से की जाएंगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि मार्केट में आप लोगों के लिए अब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इन हो चुके हैं, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि भाई आप लोगों के जहनों में ये चीज तो जरूर बिठा देगी कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी खूबसूरती के लिए है बल्कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए भी है और आपके चेहरे को हमेशा के लिए ब्यूटीफुल, प्यारा और पुरकशिश बनाने के लिए भी है। आप जब भी खूबसूरती की बात आए और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का नाम ना आए तो ये तो भाई फेयर नहीं होगा। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करने वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो भाई ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होंगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगा और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ खूबसूरती की बातें की जाएगी, यानी कि खूबसूरती की दुनिया में आप लोगों को कहते हैं वेलकम इन खुशामदी। हाँ जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतूंगा बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में, आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे जनाब, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा ब्यूटीफुल बनाएंगे कि फिर आप कहेंगे कि भाई किसी और प्रोडक्ट पे तो हमारा दिल ही नहीं लगता क्योंकि हमारा दिल तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर गए हैं। बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की क्या मैं बात बताऊं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह से तैयार किए गए हैं कि आप लोगों की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम तो बिल्कुल करेंगे लेकिन साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी करना बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही काम है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी और पूरे प्रोग्राम में अगर बात की जाए तो प्रोग्राम में आपका हमारा साथ होगा जनाब ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, पूरे 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे जनाब बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी खूबसूरती के राजों के साथ। ओके जी, तो जरा आप अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंत के हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनल यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है। हाँ जी, पूरे 2 घंटे और इन 2 घंटों में आप लोगों के साथ जो हम जिक्र करेंगे वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का होने वाला है और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए शामिल है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी सोप। ये 2 प्रोडक्ट्स अभी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश का यूज करने वाले हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए कौन सी सी बातें हैं जो कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि भाई जब तक आप चीजों के बारे में ढूंढ नहीं लेते उन तमाम चीजों के बारे में जो कि भाई आप लोगों के चेहरे के लिए सही साबित होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाई अपने चेहरे से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें लगा रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, जिनका उन्हें असर तो नहीं मिल रहा होता लेकिन उल्टा उनके चेहरे पर जो है ना वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे की खूबसूरती में जो हमारे चेहरे की जो खूबसूरती है वो सिर्फ बढ़ती रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो सकता है जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश का यूज करने वाले हैं। तो बताते हैं जी, सब कुछ बताते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की समा लाने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समा लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं जी प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी नात, बहुत प्यारी सी नात के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं। उसके बाद हम जैसे ही वापस दोबारा आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे हैं Whitish and D Skin Beauty Show sponsored by D Skin Beauty Products। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए और जनाब हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक।

0: बिल्कुल जी, क्या बात है क्या बात है। असली गिलोर हर दिन का शोगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आपको मिलेगी वो खूबसूरती जो आप हासिल करना चाहते हैं? थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी होती है जनाब। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज तो करना ही पड़ेगा। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए क्या ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब, जिनमें डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मिल रही है और डी स्किन फेस वॉश आपको मिल रहा है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं मुझे जल्दी से बताइएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, ये इस तरह सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। और साथ ही साथ जो चीज सबसे ज्यादा बताने वाली वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाला मुल्क कौन सा है। हाँ जी, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो है वो कौन से मुल्क में पी जाती है। जो टी लवर्स हैं क्या वो जानते हैं कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा चाय जो है वो कौन से मुल्क में पी जाती है? और इसका जवाब अगर आप मुझे देना चाहें तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए जनाब। और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगलेस पास दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। और आइए हमारे पेज पर, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम के लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, ये तीनों काम कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ साथ बताइए आप हमारे साथ मौजूद प्रोग्राम का हिस्सा ही जनाब। और हमारी प्रोग्राम की रौनकें तो सही जानते हैं, आप लोगों की वजह से होती हैं। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम में रौनकें बढ़ाइए और अपने होने का एहसास दिलाइए। और मुझे बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कौन से मुल्क में पी जाती है। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाते हैं और वहां से मालूमात लेते हैं कि भाई जान यहाँ पर बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं, क्योंकि कल ही बिल्कुल ये बात हुई थी कि भाई अगर आप जाते ही अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर तो वहां पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होती तो दुकानदार जो होता है ना वो आपको कोई भी प्रोडक्ट पकड़ा देता है और वो कह देता है कि भाई ये हाँ ये लगाइए। क्योंकि हमारे कुछ जो लिसनर्स ना वो बड़े मासूम है, यानी कि वो गोठाना माण्हू आए तो उन्हनि खे अगर इन चीज जे बारे में खबर ना है त डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहिड़ी क्रीम आहे या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बी ते कहिड़ो फोटो लॻियल आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डब्बी जो कलर कहिड़ो आहे, अगर इहे चीज़ूं तव्हांखे ख़बर न आहिनि त ज़ाहिर सी ॻाल्हि तव्हां स्कीम जो हिसो बणजी सघो था ऐं तव्हांखे बि ठगियो वेंदो ऐं तव्हांखे बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे नाले सां काई बि क्रीम ॾेई छॾींदो दुकानदार। त इन्हनि चीज़ुनि खां अगरि तव्हां बचण चाहियो था, तव्हां सही प्रोडक्ट परचेज़ करणु चाहियो था त तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो ऐं पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे न सब चीज़ूं ॿुधाईंदमि त तव्हां कहिड़ियूं कहिड़ियूं चीज़ूं फॉलो करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे परचेज करे सघो था ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे कहिड़ा रिज़ल्ट मिली सघनि था। तो इहे कुझु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हांजे लाइ ज़रूरी हूंदियूं आहिनि ऐं तव्हां ॼाणो त ॾाढो बहितर हूंदो आहे, तव्हांखे आसानी थी वेंदी आहे। सो बिल्कुलु तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया कोन, मूंखे ॿुधाईंदा हलो। ऐं तव्हां अगरि इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हां इहो बि मूंखे ॿुधायो। उन खां अलावा अगरि नंबर्स तव्हांखे ॿुधाया वञनि प्रोग्राम जे अंदरि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल करायो तो नंबर तव्हां लाज़मी डायल कयो। नंबर ते तव्हां राबतो करे सघो था, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो, भाई साहब खे ॿुधायो तारिक भाई भाई तव्हांजो जेको आहे कॉल अटेंड कंदो ऐं तारिक भाई खे ॿुधायो त बाबा असां फलाणी जॻह तां प्रोग्राम ॿुधूं था ऐं किथे किथे तव्हांजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वञे त हू तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए छॾींदा। ठीक हो गया, और कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ये आसानियां आप लोगों के लिए हमने तो कर दी है, लेकिन अब थोड़ी सी आसानियां हमारे लिए भी कर दीजिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और साथ साथ हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। अच्छा, यहाँ पर आप लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। नजीर खोसो भाई हमें बलूचिस्तान से सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं, लिखते हैं कि नादान इंसान 100 साल जिंदगी के लिए जी ले लेकिन लगन से मेहनत करता है मगर हजारों साल कब्र में पड़ता है हमेशा, अगर कोई फिक्र नहीं उसे। या गाल तो हम बिल्कुल भली करे चली आए। और महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम आरजे, आपकी अभी सर मॉर्निंग हुई है। चलिए जी, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका अलावा फहीम शेख हमें सुन रहे हैं, कहते हैं टुटरी टुटरी जुड़ी त ॾिस ज़िंदगीअ ॾे मुड़ी त ॾिस हज़ार लख करोड़ छॾे बणजी हिकु ॿुड़ी त ॾिस। वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वालेकुम अस्सलाम। कहिड़ा हाल आहिनि? हाल पलाल आहे, ख़ुशि आयो सफ़ा। छा कुझु सिल कला मस्जिद डबी हाल असांजा पलाल कोलिन? अलहमदिल्ला असां ठीकु ठाक आहियूं, मस्जिद में आहियूं ऐं ज़िंदगी खे फुल ऑन जीअण वारा आहियूं। के भई असां बि अची वियासीं प्रोग्राम त लाजवाब आहे हमेशा जीअं। थैंक यू सो मच प्यारा भाउ, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई कोन लगाई ईंदी, इस्तेमाल करण जे बारे में छा सोचो आहे? और फरवा कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। आप ही, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी? होप यू आर फाइन एंड वेरी वेल। यस आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? अली रजा लगारिया में सुन रहे हैं, गोठ जाम खान लगारी से। कहते हैं सिस्टर सिद्रा, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, आप कैसी हैं? शो तमाम नाइस है। सॉन्ग असां सदाई दरिया वांगुर चाढ़ में भाई मुमताज मलई, और प्ले करना डेडिकेट टू अजहर लगारी, आकिब लगारी, आरजी गुलाम मुस्तफा टालपुर, इमाम बख्श खो एंड खालिक लाशारी जी नाले। ओके आई ट्राई। अच्छा किशोर भाई आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद, कहाँ थे इतने दिन में? वैसे आज सोच रही थी कि आज याद करूंगी किशोर भाई, काले घूमती हुई हो आज तो आप खुद ही शामिल हो गए। चले आपको वेलकम कहते हैं। वैसे बताएं कहाँ गुम हो चुके थे? तबियत तो ठीक है ना, या है ना मौसमी बुखार तहांखे भी न छो है। अच्छा उन अलावा अख्तियार अली गब्बर भी हमारे साथ है। अख्तियार अली गब्बर भाई है विलेज मोहम्मद उस्मान गब्बर से। अख्तियार अली गब्बर, सुलफकार अली गब्बर, अली दोस्त गब्बर, प्रोग्राम बेस्ट, थैंक यू। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। अच्छा उन अलावा बतूल हमारे साथ है। बतूल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई एम बतूल फ्रॉम सिटी मटियारी से। कल मैंने अम्मी के साथ हैदराबाद रेशम बाजार से एक बड़ा सा रेडियो खरीदा, लेकिन जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपकी प्यारी सी आवाज ने हमारे रेडियो के स्पीकर। अच्छा चले नुकसान।
1: इट्स 1:30 PM दिस टाइम चेक।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
5: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दया उन्नीवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی 2 ساسکی ورکول مهیروی زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوری
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचैनी कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
9: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
9: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
10: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
9: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
9: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
11: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
12: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरण, मेहरापुर, मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बात है जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किए ना, सबके बड़ी अच्छे वाले रिजल्ट जो है ना वो उनको मिले हैं और बड़ी पॉजिटिव से रिस्पॉन्स हमें उनके मिल रहे हैं कि भाई हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर इतनी ज्यादा खूबसूरती हासिल कर चुके हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम कमाल के प्रोडक्ट्स। तो अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं, आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जरा पहले सुनिए कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके कितने सारे फायदे हैं जो आपको मिलने वाले। तो जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दो प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आप लोगों के लिए भाई कहते हैं ना लगो तो लखा वारो सीन आए जो तो ही जदे ब प्रोडक्ट तुम्हारा इस्तेमाल करना ना तांगे खबर पड़ी वे तो वाकई ही ब प्रोडक्ट तुम्हारी खूबसूरती जलाए छो एंड केतरा जरूरी है। तो छो जी अगर गाल कही वे तो तुम्हारी खूबसूरती जो होंगी ना अक्सर तुम दिठो हों तो खोड़ सारा मानो इलाही सारा प्रोडक्ट यूज करा इलाही सारा प्रोडक्ट जदी तुम यूज कर वेहंदा हो तदी तुम्हारी स्किन जो ना थोड़ी खराब थी है। या अगर तुम्हारी स्किन के हिसाब वाला प्रोडक्ट तुम्हें नाहन मिलना तो जाहिर सी गल तुम्हारी स्किन जो खराब थे चांसेस काफी ज्यादा होंदा है। अगर तुम भी चाहो था बाबा असि स्किन छो मुफ्त में खराब थे असा इतना पैसा भरे कर प्रोडक्ट लगायूं था सही प्रोडक्ट अगर न इस्तेमाल थे सही प्रोडक्ट न असि स्किन के मिले तो बाबा कड़ो फायदो। अगर तुम भी चाहो था तो तुम्हारी स्किन की हिफाजत थे तुम्हारी स्किन से सुठा प्रोडक्ट यूज थे तो तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सको था डी स्किन ब्यूटी क्रीम सब का पहली तो तुम्हें नालो अचान घुर्जे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तुम पांजे करीबी जनरल स्टोर से वेना था तुम्हें आराम से ही प्रोडक्ट मिली सके तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यहाँ गाल तुम्हें बुधाई हल्ला तो हम मेडिकेटेड फार्मूलो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी जदी तुम दिसंदा ना तो तुम अगर दुकानदार के चो था बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डे तुम का बी क्रीम पकड़ा छे तो तुम्हें यहाँ खबर हो जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की डब्बी के मथा एक डॉक्टर माई जो फोटो है डॉक्टर माई जो फोटो इन लाइ डो वो है छो तो हम मेडिकेटेड फार्मूलो है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के उन तमाम डॉक्टर्स मिली कर तैयार किया है जो तुम्हारी स्किन से रिलेटेड तुम्हें लाइ प्रोडक्ट तैयार करना है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यहाँ निशानी है बाबा तो हीड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो है इनके डबी के मथा डॉक्टर माइजो फोटो चेस कर तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐसी सही तरीके से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जांच कर परचेज कर छो तो अजकल स्कैम ढो थे पो मार्केट में तमाम दुकानदार ढो ठगिन पाया तो तुम थोड़ा अगर मासूम आयो तुम गोठाना आयो तो तुम्हें थोड़ी खबर हो बाबा तो तुम कड़ो प्रोडक्ट वो था उनके बुधा दुकानदार के भाई साहब हाँ डिस असा खबर आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कड़ी है असा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज कर तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में मालूम जी भी तुम्हें डींदी आया उन्हें गौर क्या कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर तो खबर पे बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट है और क्या ही बात है। अच्छा हाँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में थोड़ी सी और आप लोगों को मैं जरा डिटेल बता दी चलूँ। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये जनाब एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुका है जो कि भाई सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बड़ी अच्छी बड़ी कमाल के रिजल्ट्स दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमें क्विक सा रिजल्ट मिल जाए और ऐसा रिजल्ट जो कि भाई कोई नुकसान भी ना पहुंचाए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं और उनका ये दावा होता है कि भाई फलां दिनों में आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएंगे तो उनके अंदर बड़ी केमिकल हार्श से केमिकल डाले जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलता है ना जल्दी में वो मिल तो जाता है लेकिन उसके बाद आपके चेहरे पर बड़े अच्छे खासे साइड इफेक्ट्स आपको मिल रहे होते हैं। तो लेकिन आप ये सोचेंगे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपको इतना जल्दी रिजल्ट क्यों दे रही है, तो जरा उसकी जानिब भी आ जाते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ दो रातों में यूज करने से आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना वो इतने अच्छे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जो है ना इनकी एडिशन की गई है और विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स के साथ साथ अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये चीजें बीट के गई है। लेकिन जनाब यहाँ पर शो स्टॉपर जो है वो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स हैं, क्योंकि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना इन की जरा बात आप लोगों को बता दी चलूं कि ये जो दोनों चीजें हैं ना ये जो महंगे महंगे फेशियल्स होते हैं ना जो बड़ी हजारों में हो रहे होते हैं आपके चेहरे पर, तो उन महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स एड किए जाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट्स मिल सके। लेकिन यहाँ पर अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जनाब 2-in-1 फार्मूला बन चुका है, यानी कि एक नाइट क्रीम तो है लेकिन ये आपको जो रिजल्ट्स देगी वो बहुत अच्छे
खासी जो है ना फेशियल कराने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे रिजल्ट मिल सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से। बाबा मैजिक थी वेंदो। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सिर्फ ॿ रातियूं ऐं तव्हां ॾिसंदा तव्हां खे केॾा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिली चुका आहिनि। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कोई बि साइड इफेक्ट न आहे छो त ही मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। ऐं हुन खां अलावा तव्हां सोचींदा हूंदा त बाबा हाणे हिन में माइक्रो बीट्स बि आहिनि, वाइटमिन ई बीट्स बि आहिनि, अल्फा आरबुटीन बि आहे, कोजिक एसिड बि आहे, ग्लूटाथायोन बि आहे। त इहे सभु चीज़ूं ॿुधी करे साउंड्स ईअं महसूस थिए थो त भई ॾाढो महांगो प्रोडक्ट हूंदो। त इहा बि चीज़ तव्हांखे ॿुधाईंदे लाइ ही एतिरो महांगो प्रोडक्ट कोन्हे को मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिली रहियो आहे। रेग्यूलर जीअं तव्हां पंहिंजा इलाही सारा पैसा नाइट क्रीमनि ते वेस्ट कंदा आहियो न उन्हनि खां त हज़ार गुना बहितर चवंदा आहिनि न सस्ता रोए बार बार ऐं महांगा रोए हिकु बार। उहा कार अथव एॾो महांगो न आहे त तव्हांखे मतिलबु तव्हां अफोर्ड ई न करे सघो। मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे ऐं तव्हां वठो बाबा उहे जेके तव्हां बेकार नाइट क्रीमूं यूज़ कयो पिया न उन्हनि खां त हज़ार गुना बहितर प्रोडक्ट आहे। ॿियो मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे। तव्हां सभु माण्हू लॻाए सघो था, मर्द हज़रात ख़वातीन हर कोई इस्तेमाल करे ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त कयो बाबा। ऐं तव्हांजे ऐं ख़ूबसूरती जे विच में सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको आहे न हथ अथव। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां बि इस्तेमाल करे ॾिसो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे ज़रा सुञाणियो बाबा सुञाणियो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त तव्हांखे डायल करणो आहे 03-1250-25907-5050-970। ही तारिक भाई जो नंबर आहे। तारिक भाई मतलब वेठो हूंदो आहे मोबाइल जंहिंमहिल कॉल कंदा न त तव्हांजी कॉल जेका रिसीव थी वेंदी ऐं तव्हांखे रिस्पॉन्स मिलंदो ऐं तव्हां किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराइण चाहियो था उहो तव्हांखे सॼी डिटेल्स तव्हां हुनखे ॿुधायो, तव्हांखे ॿुधाए छॾींदो त किथे किथे मिली रही आहे या वरी किथे किथे अवेलेबल कराइण जी नीड आहे। ऐं हुन खां अलावा ॿियो नंबर आहे अगरि मतिलब कॾहिं तारिक भाई जो नंबर बंदि हुजे या न रिसीव थिए छो त हर को माण्हू कम कार में थोरो बिज़ी बि हूंदो आहे त तव्हांखे ही ॿियो नंबर ॿुधायां थी। इन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठिजो। ऐं नंबर आहे 03-273-8-4309-3032-74-89। तव्हां हिन नंबर ते बि राबितो करे सघो था। इहे नंबर तव्हां जे आसानी जे लाइ आहिनि जी तव्हां परेशान न थियो ऐं बसि तव्हां नंबर ते राबितो कयो ऐं तव्हां हुननि खां डिटेल्स वठो भाउ असां किथां परचेज़ करे सघूं था या फलाणी जॻह ते कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम।

सोनिया जी क्या बात है, यहाँ पर आपके कमेंट्स ऊपर भी चलते जा रहे हैं, तो जरा मैं जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स जरा रीड करती जाऊँ। यहाँ पर आप सुन रहे हैं जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिएगा, क्योंकि ये बड़े कमाल का प्रोडक्ट है और बड़े काम का प्रोडक्ट है, तो जरा यूज करके देखिएगा। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, और आपको भी वेलकम कहा जाता है। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं जी, अच्छा हिदायतुल्लाह आपने टॉपिक का जवाब दिया है, सही हो गया। और चाचा खालिद कहते हैं कैसी है वेगी बैटरी, चाचा को दूल्हा बना दिया आपने, कल रिपीटेड शो सुना था मैंने, अब तो चाचा ना करें। वैसे बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। और दर्दी दिल हमें सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी। और कहती कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है, जो वक्त गुजर जाए उसे सोचकर खुद को मत तोड़ो, कभी लोग और कुछ लम्हे सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा साजिद भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है। फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया। और फहीम भाई कहते हैं कि सर खालिद शादी मुबारक हो, नई जिंदगी मुबारक हो, सदा मुस्कुराते रहो। भाई और कोई नहीं, बस आंटी के साथ दोबारा से जरा चाचा की शादी करा दी हमने, तो ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं, बता हमारी आंटी के थोड़ो गुस्से अच्छी बने। अच्छा बशीर अहमद बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, बशीर भाई आपको वेलकम हो गया। और किशोर भाई लिखते हैं कि आपके सवाल का जवाब, और अगर वाकई ऐसा भी हो सकता है। और इकबाल आशारी कहते हैं विलेज सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से बाजी सिद्रा टॉपिक ओके। ओके जी, सब भाइयों को वेलकम हो गया। और साथ साथ जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। गुलाबा जो गुल कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और जी वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, अदी सिडो असा भी अच्छी वैसी तमाम जी प्यारी महफिल में, थैंक यू सोना भा। चाचा कहती असा की सबनी ठगियो आ, डी स्किन क्रीम वारन ठगियो थो न बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम वारा न ठगींदा पर दुकानदार तांके ठगींदा, छो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वनो था वरी दुकानदार तांके को बियो प्रोडक्ट दई छे तो तवे इन मामले में डिठो वनी तमा स्कैम जो हिस्सो थी वनो था, सो तमा थोड़ो बचो इन चीजों का आई तमा इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई सही तरीके सा सही तमा के गालियों खबर हो जंगे तमा वनो त सिर्फ आई सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करी अचो। अच्छा उनका अलावा हमारे साथ हैं जी, अच्छा अब्दुल रजाक भाइयों में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफार भाई हमारे साथ हैं, लाजवाब शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और मेलसी से भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, तो जाइएगा परचेज कीजिएगा। रशीद खोसो भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और जी एस एन अरवाणी आ चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मौला अली सलाम अदर, ओ माय फेवरेट आरजे मेडम मुस्कान जी, कैसी हैं आप और कैसा रहा कल का दिन आपका मुस्कान जी? कल मैंने छुट्टी की, कल आपने छुट्टी की लेकिन कल इतनी ज्यादा रश थी कि भाई मेरा दिमाग ही घूम गया था। चले अच्छा था, वैसे आपको रश में मजा नहीं आता था ना, तो सही है, बहुत बढ़िया हो गया। और फरवा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी। जैन अली लिखते हैं कि और फिर मुझे अपना आदि बना के बाद उसे याद आया कि उसे मोहब्बत तो करनी ही नहीं थी, अरे वाह क्या बात है। और किशोर भाई कहते हैं अदा में छोटे मसलों की वजह से शो ना छोड़ी आए हाँ, पर अफसोस से कहना पड़ रहा है मेरे प्यारे चाचू मुझे छोड़कर चले गए। अल्लाह काफी

सोर्स हुआ, अल्लाह पाक आपको सबर दे। और हाँ, मुझे पता चल गया था कि भाई कुछ तो हुआ ही होगा जब आप प्रोग्राम में नहीं आ रहे। ओके, और बतूल आपका गाना हम लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मुजाहिद बोजार कहती हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम बरेरी सदरा जी, कैसी आप, तबीयत ठीक है आपकी, क्या याद करोगी, मैं आपको आज कराची से सुन रहा हूँ, क्या बात है जी, उतारो एहसान असान जिंदगी भर नजारी नाजी आई आंडी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे ॾिसजो, ठीकु आहे। आंडी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर से अगरि कोन थी मिले, फर्ज़ कयो नथी मिले, त जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायो आहे प्रोग्राम में, हुन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठिजो। ऐं जॾहिं तव्हां नंबर ते राबितो कंदा आहियो न, त तव्हांखे ॿुधायो वेंदो आहे त किथे किथे अवेलेबल आहे ऐं किथे किथे अवेलेबल कराइण जी नीड आहे।

बिल्कुल जनाब, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। अबरो रहमत अली हमारे साथ हैं, गुल मोहम्मद पतूजो, बरकत अली पतूजो, रहमत अली पतूजो, और कहते हैं माहे माकोल से आपको, अच्छा हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं आपको सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ है, कहते हैं डी स्किन लगायो नाइस आहे, वाह सही वाह सही वाह। यो तव जेके जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइन था बाबा, वो यो चवन था तहां भी हणो बाबा, तहां भी सोना थियो, छो त हर कें जो हक आहे खूबसूरत थियण। साजिद भाई हमें सुन रहे हैं फ्रॉम डी आई जी ऑफिस लाड़काना से, शाद बाबा का गाना सुनाते हैं आपको, बहुत शुक्रिया।

रमजान भाइयों में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम वीआईपी है। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। कहते हैं कि कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबासे मिजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरे जबीने नियाज में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे मुझे तो ये पता भी नहीं कि डॉक्टर कैसे देखते हैं। आइए मासूम अच्छा डॉक्टर कैसे दिखते हैं ये भी इनको पता नहीं है। पूरी जिंदगी में आपने कभी डॉक्टर को नहीं देखा? सच्ची बताए मुझे।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना आप एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हो। अगर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो क्या ही बात है, और ऐसे आकर मुझे बता दिया करें कि भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आपको रिजल्ट कैसा मिला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं मैडम डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रही थी, हाणे मां चवां सो फेस वॉश टी सी एस कर मुखे त रोज सुभाणे थी करे। तव्हां छो बाबा हिकु ॿिए जे आसरे ते वेठा आहियो, ईअं एॾी सुञ थी वई आहे, छा भला मुल्क पाण वठो बाबा पाण वठो पाण वठो। उनखां अलावा किशोर भाई खे अदा अच्छा अॼु आऊं न चाहां त तूं सच में मुंहिंजो पुछी हां छा। और मूं काफ़ी शो में नोट कयो आहे, आऊं कमेंट ऑफ हुजण जे बावजूद बि शो खे लाइक करे शो लास्ट ताईं ॿुधंदो हुअसि, पर कॾहिं पंहिंजो नालो बि न ॿुधो हुयो। अच्छा भई कॉमेंट्स ऑफ हूंदा हुआ त बस कंहिंजो बि नालो खणंदासीं, बाक़ी मूंखे अहसासु थींदो आहे त तव्हां हमेशह मूंसां गॾु आहियो। ऐं जॾहिं पंहिंजाइप जो हिकिड़ो अहसासु हूंदो आहे न, बसि उहो अहसासु कंटिन्यू रखण जे करे तव्हांखे चऊं था थैंक यू सो मच। इहे तव्हांजो वैसे मोहबतूं आहिनि, वैसे सही कहते मोहबतें एक तरफ़ा से नहीं दोनों तरफ़ा से निभाई जाती हैं, और तव्हां हिन में भरपूर हिसो वरितो आहे। बस हाणे हिकिड़ो कमु कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसो, ऐं भाभी खे बि वठी ॾियो, भाभी खे बि चओ बाबा भाभी बि यूज़ करे ॾिसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और दर्दे दिल कहती हैं कि टॉपिक हा सही है जी, अबू हनीफ अलबलोची हमें सुन रहे कहते हैं उसकी सारी आदतें एक तरफ मगर हाय वो उसका हंसते हुए चाय पीना, हंसते हुए चाय पीना सही है। अच्छा पहलाज राय हमारे साथ है, लग इस्लाम कोर्ट है शायद, और आप कहते हैं थर्ड पार्कर से, ठीक है ठीक है ठीक है, और आपको वेलकम कहते हैं जी नमस्ते के साथ, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में प्रोग्राम में बातें होती हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर अभी तक आप नहीं लगा चुके हैं तो जरूर से लगाइएगा, और जरा मालूमात लीजिए आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हुए या फिर अभी तक नहीं, क्योंकि अवेलेबल कराएंगे तभी तो जाकर परचेज करेंगे, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, परचेज करते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए। टाइम हुआ है जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे, वापसी जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरे 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: सेक्टर मां खेतार खारदिन मुल्क में दाखिल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी अफ़गान तालिबान पोस्टू छॾे फरार थी विया सिक्योरिटी देरनि मौजूद नाकामी सबब अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई सिक्योरिटी फोर्स जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो

0: Chile. Madre Chica y Madre Contra, que
1: लाड़काने में हथियारबंदन की कार से फायरिंग में बाहरन सूदो चार जना कतल। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे जमीनी तकरार सां चइनि भाइरन के कतल कयो आहे। पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावर आयो ऐं संदस भाउ मंसूर खोखर, अली शेर खोखर ऐं कार ड्राइवर गुलाम मोहब मंगणे जो मारिजी विया आहिनि। हिकु औरत जख़्मी थी आहे। वारसनि जो चवण आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हू ज़मीनी तकरार सां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो आहे। एस एस पी लाड़काणे जो चवण आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि जे क़तल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर सैद बिरादरी शाह पारां वाक़े जो नोटिस वरितो वियो आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: धर्म टी वरकोटी कदमुना दयोनी खुद पोलियो रंज दा कदमुनशी नुपदी वजह द पोहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमानुता द पोलियो द मखनीवी दो सास की वरकवल महेरवई زکه چه هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370 4495024।

0: Italy.
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई नोट असा वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़ रतु अचण सख़्त सूर वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाइ आज़मूदा कोरस निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287 सुकून एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम
4: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03132525786
2: जी हा 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए है जनाब। चाहे मर्द हंसाते हैं चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहा है और खूबसूरती की दुनिया में कदम रखता जा रहा है। अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में आप भी छा जाना चाहते हैं तो आप भी इस्तेमाल करके देखिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्या बात है, इतना कमाल का कोई प्रोडक्ट है ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट नहीं देखा। क्योंकि भाई ये सबसे जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों को बताते हैं या फिर आप लोगों को समझाते हैं ना कि भाई अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का इंतखाब करें तो उसके बारे में ये तमाम चीजें जो ना वो नोटिस किया करें कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के रिलेटेड है या फिर नहीं, आपकी स्किन टाइप किस तरह की है, आपके चेहरे पर किस तरह के जो प्रोडक्ट है वो सूट करते हैं। तो इस चीजों के बारे में अगर आप लोगों को पहले से नॉलेज होगी या फिर पहले से आप उसके बारे में जानते होंगे तो आप लोगों को जो है ना स्किन से रिलेटेड कितने भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। बस आपको पता होगा आप जाते हैं मार्केट और वहां से जाकर आप वही वाला प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप लोगों की जिंदगी जो ना थोड़ी सी आसान हो जाती है। और या फिर कुछ लोग वरी ऐसे होते हैं जो महंगे महंगे फेशियल्स कराते हैं, सैलून जाते हैं, घंटों बैठते हैं, हजारों पैसे वहां पर देकर आते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हल्का फुल्का सा फेशियल करा लिया, हाँ जी रिजल्ट्स मिल गए, लेकिन फिर दोबारा से वही प्रोसेस 8-10 दिन के बाद दोबारा से वही चीजें फिर रिपीट होती रहती हैं। तो अगर इन तमाम चीजों से आप बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारी जिंदगी को थोड़ा सा आसान कर दे, क्योंकि आजकल की इस भाग दौड़ती हुई जिंदगी में ना हमें चाहिए भाई सुकून के दो पल जो कि हम अपने लिए थोड़ा सा अपने ऊपर लगाएं, अपनी स्किन के ऊपर लगाएं, थोड़ा सा स्किन केयर करें। और या तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं कि वो घंटों जाकर सैलून भी लगाए पैसे और घंटों जाकर फेशियल्स वगैरह कराएं। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये एक छोटी सी डब्बी जो है ना ये आप लोगों की जिंदगी को इतना आसान बना देगी, इतना आपकी जिंदगी में जो है ना वो रंगत भर देगी, खुशियां भर देगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई हम पहले कहां थे, क्यों नहीं लगा रहे थे, क्यों नहीं सिद्रा की बात मान रहे थे। खैर अभी भी कोई देर नहीं है, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो है ना खास बातें जरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि मैं पहले भी आप लोगों को बताती हूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं ना तो इसके अंदर विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट्स एडिशन है जनाब। इससे ये फायदा होगा कि भाई आपको जो है ना ये एक नाइट क्रीम है, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो महंगे महंगे फेशियल्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है या पैसे नहीं है, तो आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करेंगे और आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती हासिल करना चाहते थे। वैसे भी कहते ना खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत सा इजाफा करना चाहते हैं तो डी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। ये क्रीम आपके रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकती है। आपकी जल्द को नरम और मॉइस्चराइज रखने के लिए अपनी स्किन केयर पर तवज्जा देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जनाब, क्योंकि अच्छी तरह केयर की जाए तो आपकी जल्द के चेहरे की जो ताजगी है, जो निखार है, जो खूबसूरती और जो आपकी स्किन जवान है ना, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो थोड़ी सी केयर करें और सही

ओके जी ओके ॾाढो भलो गानो ॿुधूं था। अनवर भाई हमारे साथ मौजूद हे भली करे आया। वेलकम, तव्हांजे अचण सां रौनक वधी वई। भाउ, तव्हांजे अचण सां बि रौनक वधी वई। जियो करे से और आपने टॉपिक का जवाब दिया अनवर भाई, बहुत बढ़िया हो गया। और मोहम्मद जमान भाई क्या कहते हैं, यो मुखे लगे तो तव्हां थोड़ी थोड़ी टोक कई आहे। मन हाणे वॾा थी विया, टोक बि करे वञो था। मोहम्मद भाई, मोहम्मद जमान भाई सुधर जाए, सुधर जाए। अच्छा, मुलाई मुजाहिद बोजार कहते ओ सिड्डो, टॉपिक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा चाय चाइना में पी जाती है, क्या बोलती तू, मैं एग्री नहीं करती आपसे। दर्दे दिल कहती है तभी तो मोबाइल को कान से लगाकर सुन रही थी। चंदा कान की बातें बता, अच्छा काम की बातें बता रही थी। मैंने कहा ये काम की बातें, कान की बातें कौन सी होती है। सही सही, हाँ जी, मैं सारी काम की बातें बताती हूँ, आप कान लगा के सुना करें। रिजवान अली हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भाई आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हम कैसे माने। अलीशा क्वीन कहती है कि खुद को किसी की अमानत समझकर हर वक्त वफादार रहना मोहब्बत है। ओ या गाल कही ना सोनी। और कहती है कि मैं तुम्हें चांद कहूँ ये तो है मुमकिन, मगर लोग तुम्हें रात भर देखें ये मुझे गवारा नहीं। वाह वाह वाह वाह, इसे भी कहते हैं मोहब्बत। क्या बात है। ओके okay, जी फहीम भाई कहते हैं कि अदा बस केतरा मानू तू के मारी दे मुझा दुआ। हाँ भाई, तहां जड़ो सादो मानू असा को निठो सी बाकी पानी पूरी लाइफ में अखाच लाइफ में नहीं देगा। भाई तहां ये हमेशा सादा रहजो, ठीक है, तहां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना रहजो। और अलीशा कहती है कि मेरे प्यारे भाई सदाम हुसैन को सलाम बोले से। जी जी बिल्कुल, आपके भाईजान को सलाम। और रिजवान कहते हैं कि मेरे नाइस हुई आपका, प्लीज सॉन्ग सुनाओ, आपको बहुत आपकी मेहरबानी होगी। जी जी, मां ॾिसां थी तव्हांजो गानो हलाए वठूं था। और कहते कि काश तू मूंखा पुछी तोखे छा खपे, मां हथ हथ ते रखी चवां तुझो साथ खपे। वाह वाह वाह वाह। अच्छा, मुजाहिद मलिक कहते हैं कि सिडो डी स्किन फेस वॉश नहीं मिल रहा जी टी के में, आज तो गाना प्ले करो शाहिद भंगवर का अल्लाह मेली मैयारा। मां हलायां थी बिल्कुल तव्हांजे लाइ गानो, ऐं तव्हां डी स्किन फेस वॉश अगर नथो मिले त तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधायो आहे न, नंबर ते हिकु दफ़ा तव्हां राबितो करे वठिजो, ठीकु आहे। जॾहिं तव्हां राबितो कंदा त तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते ईज़ीली डी स्किन जो फेस वॉश हुजे या डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे अवेलेबल थी वेंदी, ठीकु आहे। अच्छा, एसन कहते हैं शो भी मैंने रात को सुना था, वैसे मजा था कल वाले शो में। हाँ, कुछ ज्यादा ही वाली एनर्जी थी। अच्छा फरवा, आपने हमारा शो लाइक और शेयर कर दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रही मटियारी से। ओके भाई को वेलकम कहते हैं। दर्दे दिल कहती है कि चंदा अब वो सॉन्ग भी प्ले कर दो, एंजल वाला, जिसे सुनकर लगता है हवा में उड़ रही हूँ। हाँ हाँ, लगाया थी लास्ट टाइम, थोड़ो सबर कर। अच्छा, उन खां अलावा पहलाज राय कहते हैं, अच्छा पहलाज भाई आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किशोर भाई कहते हैं तू जो हिसो गाया बा चरी लगी अथो वाके, ये तां सही था जो। छा कयूं छा कयूं बुधायो त। एसन कहते हैं आज तक मुझसे तो आपने ये नहीं पूछा कहाँ थे, पूछा है भाई बहुत मर्तबा पूछा है, आप भुलक्कड़ हो गए आजकल लग रहा है मुझे, गजनी गजनी। जब बहुत दिनों के बाद आते हैं तो पूछती हूँ कहाँ थे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे थे नहीं। और कहते मुझे ये फील होता है, नन तहां यो फील बिल्कुल भी न कयो। और जैन कहते हैं इश्क में जो ना फना हो वो मोहब्बत किससे कैसी, गुलाम बादशाह का ओएसटी सुनाए। बुधरायां थोड़ो सबर तो कयो, तकर भला चाजी अथव कहिड़े जड़ी गाल। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो बाबा, अगर नथा कयो त इहा खेर जहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे का, तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करणो पवंदो। अमान अल्लाह महर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको। वसीम अली आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी। और सालार अली कहते हैं सलाम हाउ आर यू, शो बेस्ड है, टॉपिक का पहले से आपको जवाब मिल चुका है, मैं बताऊंगा तो कॉपी कहेंगे सिस्टर। अल्लाह केॾा मासूम आयो कसम सां तव्हां सभु।
अच्छा मोहसिन अली भी हमें सुन रही है, आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है मोहसिन, बहुत शुक्रिया। और साजिद भाई आपको अच्छा कहते हैं, सिदरा मुस्कान असान जी भी मोकल पूरी थी, 4 महीना बस से दुआ कयो वरी दुबई मां मैसेज कंदा सी, दुआ कयो खैर सां पहुंचा। चलो जी अल्लाह कंदो तां खैर सां पहुंचंदा, ऐं बहुत शुक्रिया तां से गड आयो, तां जो मोहब्बतूं आहिनि बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तां लगायो पिया कोन, इहो ॿुधाइजो बतूल गानो वटि पंहिंजो।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, जल्दी से पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और इसी के साथ साथ हजार भाइयों में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। अनवर भाई कहते हैं अन्या चौथा सिंध में, अल्लाह जाए बुधा कसम दे, टैलेंट आए बाबा केर तो चेना है। और चाचा कहते हैं कि सिद्रा मुस्कान बेटा, कराची में गर्मी बहुत है, मैं कल बाहर लगा के गया था डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो पसीना आया थोड़ी थोड़ा एसी कार में भी। अरे भाई दिन में नहीं लगाए ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम, रात को लगा के सो जाया करें चाचा।

अच्छा इरम हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहती मुझी प्यारी दिलबर दोस्त अब आपकी तबीयत कैसी है मां ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तां बुधाय की आयो हबीबुल्ला थेबू कहते सॉन्ग बुधराए शमनी मिराली जो हुस्न में तू जोर आ मानू तू मोर आ अल्लाह बुधराया थी बुधराया झंडो मरी खां मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम मंजूर अली खास के लिए गुलाम खान मोहम्मद खास के लिए हाजी जान मोहम्मद खास के लिए कुर्बान खास के लिए भांजो मोहब्बतूं बाबा तां के चौंदा भली करी आया शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कुनैन जहरा आपका शो सुन रहे हैं शो जबरदस्त है अल्लाह पाक आपको और आपकी टीम को और सुनने वालों को खुश रखे आमीन सुम आमीन जवाब है ओके गोठ गुलाब लगारी खान साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिजवान लगारी वालेकुम अस्सलाम शो नाइस है प्लीज प्ले समीना गुडी मां कोशिश कयां थी तांजो पसंद जो फरमाइशूं सब हलायूं पर प्रोग्राम नंढड़ो आहे प्रोग्राम इजाज़त नाहे ॾींदो अच्छा गोठ मामन तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू कहते हैं आपका शो वेरी नाइस है सलाम आपको वालेकुम अस्सलाम आपको मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं अच्छा हमारे साथ ही भाईजान कहते हैं आपके सवाल का जवाब इंडिया है और आतिफ का गाना ये जो आपने गाना बोला है ना ये सरासर टी सीरीज का गाना है तो हम टी सीरीज का इंडियन गाना बोलते मेरे को लगता है कोई क्राइम के लिए बोल दिया है आपने तो ये जरा इंडियन गाने नहीं लगा सकते हम और बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे जयपाल भाई कहते हैं कि गुलाम की मयार भी अजीब होती है शरीफ को बेवकूफ मकार को चालाक कातिल को बहादुर और मालदार को बड़ा आदमी समझते हैं नाइस भाऊ बिल्कुल भाऊ आपने तो नाइस ही बात कर दी बहुत बढ़िया

असांखे न खपे लीलो ईअं न असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे ऐं बिल्कुल बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे खपंदी जॾहिं तव्हां वेंदो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां मालूमात वठो मिले थी कोन मिले थी अवेलेबल करायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो बाबा पोइ सफ़ाई हर को तव्हांजी तारीफ़ कंदो हर को तव्हां ते आशिक थी पवंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो सुहिणा सुहिणा थी वञो टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था वापसी जल्दी मोटी अचां थी गाॾी न वञो हिते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट लगाइए और खूबसूरत हो जाएगी।

हाँ जी, क्या ही बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना जो कि आप एंजॉय कर रहे हैं। और ये गाना हबीबुल्ला थेबू भाई जान की चॉइस के ऊपर हम एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये गाना उन लोगों को डेडिकेट जाता है जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद कनु बाबा, अगर तुम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो था, ये गानों तुम्हारे लाए अथव, एंजॉय कयो।

हाँ जी, क्या ही बात है, क्या ही बात है। और इसी के साथ साथ अगर आप भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपके मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बहुत बड़ा वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ हम आ चुके हैं जी प्रोग्राम के लास्ट लिंक में, तो तमाम तरह सुनने वाले समातों को वेलकम। और साथ ही साथ जनाब, मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए कि दुनिया भर में कौन सा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। तो जो टी लवर्स हैं उनको तो मेरे ख्याल में पता होगा, बाकी सारे लोगों को पता है, सबको पता है। हाँ जी, तो ऐसा है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप इसलिए करेंगे क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए जरूरी है। कई मरतबा हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में कर लेते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होता, लेकिन हम फिर भी वो चीजें कर रहे होते हैं। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इससे तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे वाले फायदे पहुंचने वाले हैं। सबसे पहली बात, तो आपके चेहरे पर जो है ना वो इतना अच्छा प्यारा निखार आएगा, आपके चेहरे के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, फ्रेकल्स हो, क्रिकल्स हो, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती है। आपके चेहरे की स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, शाइनी हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है और जनाब बेदाग इन प्यारी प्यारी हो जाती है। तो सॉफ्टली और मॉइस्चराइज अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन होनी चाहिए तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये भी चीज है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो जो लोग ये चीजें सोचते हैं कि भाई हम तो नहीं लगा पाते, हमारी स्किन तो बड़ी सेंसिटिव है, कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया गया है। तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मेडिकेटेड फार्मूला है, 100% गारंटी के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हर स्किन के ऊपर। और मर्द हजरात लगा सकते हैं, खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। और जनाब इसके अंदर वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स है। तो पूरे पाकिस्तान में, यानी कि जेतरो हेडो सारो सानो वडो पाकिस्तान है ना, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट आए जिनके अंदर वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जो एडिशन कई वही आए उनके अंदर डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो वो प्रोडक्ट है जो तमाम प्रीमियम क्वालिटी जो प्रोडक्ट है, आई तमाम जबरदस्त आई निरालो प्रोडक्ट है, आई सफा खास प्रोडक्ट है, स्पेशल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। तो आपके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है तो आप जरा फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी, ये एक नाइट क्रीम है और साथ ही साथ ये 2-in-1 फार्मूला है, यानी कि आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रात के टाइम लगाकर सो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए आप रोजमर्रा अपनी ब्यूटी के रूटीन में डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज कर सकते हैं। इसका खूबसूरत सा एहसास आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करता है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का फेस वॉश तो भाई क्या ही कहने, चुम्बेश्वरी प्रोडक्ट है। और साथ साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है, आपकी स्किन हमेशा जो है वो क्लीन रहती है, ग्लो करती रहती है। तो अगर आप मर्द हजरात हैं, अगर आप खवातीन हैं, सारे लोग ही लगाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो जल्दी से नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिएगा। और नंबर्स क्या होने वाले हैं, नंबर से जनाब 0333-2738-4309 बड़ी 3 84 3 9 नंबर है 03-12-50-25-907 बड़ी 312-50-970 ये नंबर डायल कयो। ऐं नंबर ते तव्हां कॉल भी कयो या वरी मैसेज कयो त हुननि खे ॿुधायो त तव्हांखे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल खपे, जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थिए। ऐं तव्हांखे काॾे शहर न वञणो पवे, तव्हांखे काॾे सिटी न वञणो पवे, तव्हां बसि पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं ईज़ीली आसानी सां वञी परचेज़ कयो ऐं इस्तेमालु कयो।

या मास्टर फते इन्हनि में थोरो कंफ्यूज थी वियमि। तव्हां कंफ्यूजन दूर कयो। कंहिंजो गानो ॿुधण चाहियो था? मीरपुर ख़ासि अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ है। भाई जी ऐसे ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। अच्छा, ज़ेन की च्वाइस पर हमने ये वाला गाना लगाया है। फरमाइश कर रही थी गुलाम बादशाह सुंदरी के ओएसटी की, तो आइए जरा सुनते हैं।

दर्दे दिल, दर्दे दिल, थांबा थांबा, रुको रुको। चाचा खालिद को वो मुबारकबाद दी जा रही है, ठीक है, और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, ठीक है। अच्छा नहीं जी, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा। मैं जो आजकल ये ड्रामे बन रहे रोमांटिक से हीरो हीरोइन वाले, ये मुझे पसंद नहीं आ रहे। पाकिस्तानी गाने बस थोड़ी हटके, थोड़ी उनकी अगर स्टोरी हो तो वो देख लेती हूँ, वरना ये सारे ड्रामे रेगुलर लगते हैं बस मुझे। एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक विलन होगा, एक अमीर होगा, लड़की गरीब होगी, ये क्या है, सो बोरिंग।

जी जी। और जो ये फहीम भाई, आपने जो फेस्टिवल हुआ था कल परसों शायद, उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में, नहीं जाती मैं।

अच्छा, अली रजा लगारी भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मधोश भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। मुजाहिद मलिक कहते हैं, मानो बिल्ली मेरा कमेंट कहाँ गया, पढ़ा नहीं। पढ़ा भाई पढ़ा, जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कमेंट्स को इग्नोर कर दूँ। अच्छा, हमारे साथ ही यहाँ पर अब्दुल हफीज थेबू कहते, आंसर दिया है आपने बढ़िया, कहते अनुषा बतूल कहाँ है, वो अपने घर है, अपने घर। किशोर भाई कहते हाँ सब जागना, मुखे याद न थो करी, मुखे याद न थो करी। यही तो है ना, ऐसा ही तो होता है। आप बोले हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर मत कीजिएगा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। और ऐसा कहते हैं रुको, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो पूछन नहीं आई बताऊंगा। अच्छा पूछा, खीरा जो किलो घड़ी आए, खंड जो किलो घड़ी आए, ये गाने पूछो। जो मेरे काम की बात है मैं वही पूछूंगी ना।

हजार भाई बिल्कुल आप पूछिए, जिससे मर्जी पूछिए, ये भी पूछिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना फायदा है, आपको अच्छे से बता देंगे। मोहम्मद जमान भाई कहते हैं कि शो अलाई सुठो आ बुआ जी, भले कोई लिख रहा है वठे एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम VIP आए बुआ जी, भले कोई। अच्छा चे तो भले कोई असानो चेहरो भेटाए दिसे, वाह वाह वाह वाह जी शायरी, वाह जी शायरी हुई, सफा मेला लूट लिया आपने तो। और इन खां अलावा ही असान प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक है, बी एक गाल तहां के बुधाई नहीं अला।

ताले मरी भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, वेलकम वेलकम। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है, तो आप लोगों से इजाजत लेंगे जनाब। और आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखिएगा, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में अगर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात होगी ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं तो लाजमी करके देखिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको पता चले कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी क्रीम एडी भली क्रीम आखिर छो आए, तो तव्हांजे चेहरे जा सब प्रॉब्लम दूर थी वेंदा, तव्हांखे खूबसूरती मिलंदी, तव्हां सफ़ाई चमकंदा वधंदा, माण्हू तव्हां खां पुछंदा बाबा छा इहो राज़ आहे तव्हांजे खूबसूरती जो, ऐं तव्हां ॿुधायो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल अथव। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे हर जॻह ते आराम सां मिली वेंदी, ऐं हिन खां अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾो गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि ट्राए करणो आहे। डी स्किन जो फेस वॉश बि लॻायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻायो, ऐं सोणा सोणा थी वञो। फसली कहती आप बि, हांजी बहुत शुक्रिया, आप बि ख़ुशि रही, सभु ख़ुशि रही, ख़ुशि रही। और इसी के साथ साथ लेते हैं जी इजाजत, बहर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में कमेंट किया, लास्ट में कमेंट किया, मतलब पता चला कि आपने पूरा प्रोग्राम सुना, थैंक यू वेरी मच। और आज के प्रोग्राम का जो सवाल था उसका जवाब तुर्की था, तुर्की, ठीक है। और इसी के साथ वरी तव्हां सां मिलूं था जी 5 बजे वारे प्रोग्राम में, पंहिंजो ओ हीरो सरो ख़्याल रखंदा, किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था, जेको फीडबैक रहिजी वियो को गानोड़ो शानोड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था, मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अला हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड।

बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जी चौकी ते हमले जी कोशिश नाकाम, नव दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद दहशतगर्दन किंग वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज ते हमले जी कोशिश कई। फोर्सेज जी कार्रवाई में ब दहशतगर्द थडे ते ही मारिया वया। सत दहशतगर्दन के पीछो करे जहनम भेड़ो कयो वयो। उन खां अग सिक्योरिटी फोर्सेज जी तुर्बत में कार्रवाई में ब दहशतगर्द मारजी वया। पाक फौज कुरम सेक्टर मां फितना खारजन मुल्क में दाखिल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। अफगान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब नाकामी सबब अफगान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो। लाड़काणे में हथियारबंदनि जी कार ते फायरिंग, ॿिन भाइरनि सूदो, चार ॼणा क़तल। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि कार ते फायरिंग करे ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो। पुलिस मूजिब फायरिंग में हलावर आयो ऐं संदसि भाउ मंसूर खोखर, अली शेर खोखर ऐं कार ड्राइवर मारजी विया। हिकु औरत ज़ख़्मी थी आहे। वारसनि जो चवण आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हू ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो आहे। SSP लाड़काणे जो चवण आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि जे क़तल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वाके जो नोटिस IG सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम।

न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात, पोलियो के खात्मे, माओ ए बार जी सेहत समेत मुख्तलिफ़ शोबन में सहकार ते गालियूं कयूं वयूं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मां पोलियो के मुकमिल खात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरजायो। बिल गेट्स वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के पोलियो खात्मे लाइ कोशिशन की वाखाण कई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार पारां वलारियल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि जी मज़म्मत। इसहाक़दार चयो त वलारियल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी कोशिश कई पई वञे। आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल कश्मीरियुनि सां कयल वायदा पूरा करे अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दनि जे ग्रुपनि ते गर्दी आहे। अफ़ग़ान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ दहशतगर्दीअ लाइ इस्तेमाल न थियण ॾिनी वञे। पाकिस्तान सऊदी अरब सां खुदमुख्तियारी सलामती मुक़दस हंधनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सऊदी अरब जे क़ौमी ॾींहं जे मौक़े ते चयो त हुसैन जे मके ते हमले जी मज़म्मत कयूं था। हुरमिन शरीफ़ जी सलामतीअ खे को बि ख़तरो समूरी दुनिया जे मुसलमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसाए थो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां अमेरिकी सफ़ीर नेट बेकर जी मुलाकात, इलाक़ाई सिक्योरिटी जे मामलनि ते पाकिस्तान जे अमन कोशिशनि बाबति ॻाल्हियूं कयूं। पाक अमेरिका लाॻापनि खे हथी ॾियण ऐं सीड़पकारी जे मौक़नि जे इम्काननि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दुनिया दहशतगर्दी विच में पाकिस्तान मज़बूत भित बणियल आहे। अमेरिकी सफ़ीर नेट पारां बेकर दहशतगर्दी ख़िलाफ़ पाकिस्तान जे क़ुर्बानीनि जी वाखाण कई।

रज़ा केस जे अदालती कमीशन जी गुज़िरियल ॾींहं वारी कार्रवाई जो लिखित में हुकमनामो जारी। सेक्रेटरी सिहत सिंध एसएसपी समीउल्लाह सुमरो ऐं पीओ सी कोर्डिनेटर शहरयार मेमण खे नोटिस जारी। डीएसपी सिराज अहमद लाशारी ऐं सीपीएलसी जे काशिफ इफ्तिखार खे 28 सेप्टेम्बर ते पेश थियण जो हुकुम। अदालती कमीशन बार बार ख़ातिरियूं कराइण बावजूद समूरो रिकॉर्ड फराहम न करण ते अफ़सोस जो इज़हार कयो।

तंडो मोहम्मद खान में घरू तकरार था भाव हथा भाव कतल रेलवे फाटक भरसा भारन में घरू तकरार था जेड़ो थे फायरिंग में रफीक मंगसी मारजी वो मंजूर मंगसी जख्मी थो मकतूल जो मड़ जख्मी के अस्पताल मुंतकिल।

0: रुस्तम भरसां महर जतोई धुरियुनि में तकरार तां ॿ ॼणा मारिजी विया। फायरिंग में हज़ारो जतोई ऐं मुर्तज़ा महर मारिजी विया। वाजिद जतोई ज़ख़्मी थी पियो, लाश इस्पताल मुंतक।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: मातली आसपास की अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस, दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-32-41-230।
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
11: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
11: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
11: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
11: 0331252578 6।
5: जी हा 3135525786।
11: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी, घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 बजे खां राति 10 बजे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 बजे खां राति 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-3141-230।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
10: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
10: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: kagak.
1: लाड़काने में हथियारबंदन की कार से फायरिंग बिन बारन सूदो चार जना कतल। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग करे जमीनी तकरार का चैन जणन के कतल कयो। पुलिस मौजूद फायरिंग में अलावर आयो ए संदस भाव मंसूर खोकर अली शेर खोकर ए कार ड्राइवर मारजी वया। एक औरत जख्मी थी है। वारसन जो चवण है पेंे ही बिरादरी के मान जमीनी तकरार का चैन जणन के कतल किया है। एसएसपी लाड़काणो जो चवण है कई धुरियूं पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि जे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि। वरी वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां वाके जो नोटिस आहे जी सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती। जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो।

पाकिस्तान सऊदी अरब सां खुदमुख्तियारी सलामती ऐं मुक़दस संदनि जे तहफ़ुज़ लाइ गॾु आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सऊदी अरब जे क़ौमी ॾींहं जे मौक़े ते चयो त हुसैन जे मके ते हमले जी मज़म्मत कयूं था। हुरमिन शरीफ़ जी सलामतीअ खे को बि ख़तरो, समूरी दुनिया जे मुसलमाननि जे जज़्बनि खे छियो रसाए थो। वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी सां अमेरिकी सफ़ीर नेडी बेकर जी मुलाक़ात, इलाक़ाई सिक्योरिटी जे मामलनि ते ऐं पाकिस्तान जे अमुन कोशिशनि बाबति ॻाल्हियूं थियूं। पाक अमेरिका लाॻापनि खे हथी ॾियण ऐं सीड़पकारी जे मौक़नि जे इम्काननि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दुनिया ऐं दहशतगर्दी विच में पाकिस्तान मज़बूत भित बणियल आहे। अमेरिकी सफ़ीर नेडी पारां बेकर दहशतगर्दी ख़िलाफ़ पाकिस्तान जे क़ुर्बाननि जी वाखाण कई। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां एशियाई तरक़ियाती बैंक जे कंट्री डायरेक्टर जी मुलाक़ात, तालीम, ट्रांसपोर्ट, सिहत, बहराड़ी जे तरक़ी ऐं डिजिटल मनसूबनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त हर ॿार खे महफ़ूज़, जदीद ऐं मयारी तालीमी सहूलियतूं फराहम करण जो अज़म आहे। सिंध हुकूमत एशियाई तरक़ियाती बैंक सां वहिंवारी वधीक मज़बूत बणाईंदी। हमलनि में ज़हरीले पाणीअ जी छोड़, सरकारी अफ़सरनि जी मुजरमानी गफ़लत करार। सिंध हाई कोर्ट जे आइनी बेंच ॻोठाणनि पारां साल 2014 में दाख़िल करायल दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो। फौरी तौर कब्ज़ा ख़तम कराए हमलनि में खीरथर जे जबलनि खां शामिल थींदड़ साफ़ पाणी जो रुख मोड़ण वारे मामले जो जाइज़ो वठण जो हुकुम ॾिनो। सिंध अदालत हमलनि में ज़हरीले पाणीअ जी छोड़ खे सरकारी अफ़सरनि जे मुजरमानी गफ़लत करार ॾिनो। फ़ैसिले मूजिब हमलनि मिठे पाणी, नेकार ज़रिए ऐं बोर्ड जे इंतज़ाम जो निज़ाम आहे।

0: ठंड मोहम्मद खान में घरू तकरार था भाव था भाव कतल रेलवे फाटक भरसा बारन में घरू तकरार था जेड़ो थो फायरिंग में रफीक मंगसी मारजी वो मंजूर मंगसी जख्मी थी पो मकतूल जो मड़ जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कर
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज GAFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर पियारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
5: मातली आसपास की अवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12 सैकड़ो घरू सार्फिन लाए हर दवा 10 सैकड़ो रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासी घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704495244
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321 2300
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 0331252576
6: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखबल माशुमान द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई जका चुहम दग सास की द माशुमान द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी और द हगी द खूबन वलवत वजरी मुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
5: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
6: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
8: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704-94-244।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ जीए एफएम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफएम रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
2: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: मोहम्मदी फार्मेसी नज्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ए किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जू पक्यू छिटू लगरा लाए खुशखबरी छा चाहियो था अवां जे घरन जू छिटू पक्यू हुजन त केश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: 27 सितंबर ते पंजाब के कुछ शहरन में इंटरनेट भी बंद हूंदी जरियन वजह पंजाब के घरू खाते अमन अमान की सूरत हाल के दिसदे वफाकी हुकूमत के खत लिखो अज का M2 मोटरवे ते वडियन गाड़ियन ए कार्गो व्हीकल्स ते पाबंदी.

वफाकी वज़ीर ताला तारण चयो आहे त माण्हुनि खे कूड़े बयाने पोयां लॻाए ज़हन साज़ी कई वई। जॾहिं मईशत तरक़ी करण लॻंदी आहे त ही धरणा एहतजाज करण शुरू कंदा आहिनि। पीटीआई केपी में बि को कम न कयो आहे। पीटीआई 13 सालनि में केपी खे तबाह करे छॾियो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असां चाहियूं था त मार्च पुरमन थिए। हुकूमती टोलो प्रोपेगेंडा थो करे असां इदारनि ते हमला कंदासीं। असां ॻाल्हियुनि जे हक़ में आहियूं। ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हाइण घुर्जे पर ॻाल्हियूं न पयूं थियनि। सियासी मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए निकरंदो। पीटीआई क़यादत महमूद ख़ान अचकज़ई ऐं अलामा राजा नासिर अब्बास ॻाल्हियुनि लाइ तयार आहिनि।

0: ஜீவன். பரஞ்சி பரமுக புற்றாது
1: लड़कण में थरपंदन की कार से फायरिंग, बिन फायरिंग सूदो चार जना कतल। लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार से फायरिंग कर जमीनी तकरार सां चइन जणन के कतल कयो। पुलिस फौज फायरिंग में अल वरायो संदस भाव मंसूर खोखर, अली शेर खोखर ए कार ड्राइवर गुलाब मोहिब मंगड़े जो मारजी व्या। एक औरत जख्मी, वारिसन जो चवण है त पेंजी बिरादरी जे माण्हुनि जमीनी तकरार सां चइन जणन के कतल कयो आहे। एसएसपी लाड़काणो जो चवण है त ॿई धुरियूं पंहिंजी बिरादरी जे माण्हुनि खे कतल में मुलविस रहियूं आहिनि। वॾे वज़ीर मुहम्मद अली शाह पारां वाक़े जो नोटिस आईजी सिंध खां रिपोर्ट तलब, जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम। पाक फौज जापान तालिबान रिजीम जा एयर सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब पाक फौज जे एयर डिफेंस सिस्टम ख़बर पख़्तूनख़्वा में अफ़गानिस्तान खां आयल अठ ड्रोन्स खे किराए तबाह करे छॾिया। अफ़गान तालिबान अवामी हंधनि खे निशानो बणाइण वारी घुसतिलाणी कोशिश कई। चार ड्रोन्स तुरखम बार्डर भरिसां ऐं चार ड्रोन्स कुहाट भरिसां जाबलू इलाइक़नि में किराया विया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जी चौकी ते हमले जी कोशिश नाकाम, नव दहशतगर्द मारजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिब दहशतगर्दनि किंग वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज ते हमले जी कोशिश कई। सत दहशतगर्दनि खे पीछो करे जनम भेड़ो कयो वियो। हुन खां अॻु सिक्योरिटी फोर्सेज जी तुरबत में कार्रवाई में ॿ दहशतगर्द मारजी विया। पाक फौज कुर्रम सेक्टर मां फितनतुल ख़ारिजीन मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि नाकामी सबबि अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
3: जी हाँ 2315525786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: बाबा फेरिंग थी भाई फेरिंग थी भाई मुझे पुट्टा के अलावा रहे पुट्टा मंसूर पुट्टा यार मामा भाने जा शहर में जब देरा उन्हें के मार दियो पुलिस वाला मोसा कहो नहीं वडी कैसे मां जा जाया करे उन्हें के मथे कहे पुलिस ने पैसा नहीं खाए बाबा साईं मुझे हक कहो तो कहो दे ना क्यों तो मां सीधी कोर्ट है फार कराई ना बाबा साईं अड़ा सारा जुल्म चलाए मोसा हक के मसा ना को ना क्यों
1: लाड़काने में कार मथां हथियारबंदन जी फायरिंग बिन भाइरन समेत चार जणा कतल लाहौरी पाड़े में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन कार ते फायरिंग करे जमीनी तकरार तां चइन जणन खे कतल कयो पुलिस मौजे फायरिंग में अलाह वरायो ऐं संदसि भाउ मंसूर खोखर अली शेर खोखर ऐं कार ड्राइवर गुलाम मोहिब मंगणे जो मारिजी विया हिक औरत जख़्मी वारसन जो चवण आहे त पंहिंजे ई बिरादरी जे माण्हुनि ज़मीनी तकरार तां चइनि ॼणनि खे क़तल कयो एस एस पी लाड़काणे जो चवण आहे त ॿई धुरियूं पंहिंजे बिरादरीअ जे माण्हुनि जे क़तल में मुलविस रहियूं आहिनि वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां वाके जो नोटिस आई जी सिंध खां रिपोर्ट तलब करे वरिती जवाबदार गिरफ़्तार करण जो हुकुम

0: पाक फौज अफगान तालिबान रजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छॾिया। अफगान तालिबान रजीम तरफ़ां 8 ड्रोन पाकिस्तान जे फिज़ाई हदनि में दाख़िल थिया। सेक्रेटरी ज़रियन मूजिबि पाक फौज एयर डिफेंस सिस्टम ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में अफ़गानिस्तान खां आयल 8 ड्रोन खे किराए तबाह करे छॾियो। अफ़गान तालिबान अवामी हंधनि खे निशानो बणाइण वारी बुज़दिलाणी कोशिश कई। 4 ड्रोन तोरखम बार्डर भरिसां ऐं 4 ड्रोन कोहाट भरिसां जाबुल इलाइक़नि में किराया विया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जी चौकी ते हमले जी कोशिश नाकाम। 9 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिबि दहशतगर्दनि किंग वादीअ में सिक्योरिटी फोर्सिस ते हमले जी कोशिश कई। फोर्सिस जी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द थॾे ते मारिजी विया। 7 दहशतगर्दनि खे पीछो करे जहनम भेड़ो कयो वियो। इन खां अॻु सिक्योरिटी फोर्सिस जी तुर्बत में कार्रवाईअ में 2 दहशतगर्द मारिजी विया।
1: अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें ऑटोमेटिकली विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बाय एडिंग देम इन गैंगो ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट।

पाक फ़ौज कुरम सेक्टर मां फितना ख़ारिजन मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम बणाए छॾी। अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि नाकामी सबबि अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी चौकियुनि ते फायरिंग कई। सिक्योरिटी फोर्सिस जी जवाबी कार्रवाई दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात। पोलियो जी ख़ात्मे, माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जी मुकमल ख़ात्मे लाइ हुकूमत जो अज़म वरिजायो। बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जी पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जडहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
4: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है, इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-230।
6: मातली आई आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन ॿिनी कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
7: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 0331-252-5786।
7: जी हाँ 2315-5786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

कलमा पढ़ो से हिक भेरा दीहर पढ़न बियाए बल बल पढ़न दिए यार सजन दी हूं दिसा कु जुदाई मुस्लिम विचों का फर्तीवन ए केरी हूं दी अदा।

अर्थात त मजबूर आशिक के पंहिंजा यार दोस्त रोकिन था त तूं पंहिंजे महबूब सां मिलण न वञ, तुंहिंजा दुश्मन तोखे हुते तुंहिंजा वेरी मारे विझंदा। अर्ज़ु करे पियो, मां मौत खां नथो डिॼां, बहरहाल महबूब जो दीदार ज़रूरु करणो पवंदो। मां त घणो पंहिंजे पाण खे रोकियां, पर छा करियां, मुंहिंजी दिलि नथी रहे।

जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे पेट्रोल सस्तो न थो तो मैशत तबाह थी वी लेविया की खात्मे लाए हुकूमत के दिनल तजवीज़ों अजा तई को जवाब ना मिलो।

पाक फौज अफगान तालिबान रजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छॾिया। अफगान तालिबान रजीम तरफ़ा 8 ड्रोन्स पाकिस्तान जे फिज़ाई हदनि में दाखिल थिया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब पाक फौज जे एयर डिफेंस सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान खां आयल 8 ड्रोन्स खे केराए तबाह करे छॾियो। अफगान तालिबान अवामी हंधनि खे निशानो बणाइण वारी बुज़दिलाणी कोशिश कई। कुरम सेक्टर मां फितना ख़ारिजनि जे मुल्क

जीअ सिंध रहबर कमेटी 15 अक्टूबर ते लाड़काणे ऐं 8 नवम्बर ते कराचीअ में वहदत सिंध मार्च जो ऐलान करे छॾियो। हैदराबाद में रहबर कमेटी जे सरबराह रियाज चांडियो जी सदारत हेठ इजलास में डॉक्टर नियाज कालाणी, नवाज खान ज़ोर, शबीर अहमद जमाली ऐं ॿियनि जी शिरकत। अॻवाननि जो चवण हो त वफ़ाक़ी क़ुवतूं सिंध जे ज़रई ज़मीननि, सामूंडी पटी, तेल, गैस, कोयले, मैदनियात ऐं सिंधू दरिया ते कब्ज़ो करणु चाहिनि थियूं, जेको सिंधी क़ौम कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदी। सिंध में नस्ली ऐं लसानी तसाद पैदा करण वारनि कोशिशुनि खे नाकाम बणायो वेंदो।

0: हिन पंजाबी जीअं असां फेराए ते लाड़े खां तीअं बाबा फेरिन थी वई। फेरिन जी पई मुंहिंजे पुट खे अला वारा जो पुट आहे, मुंशर पुट आहे, यार मोहम्मद भाणे जा शहर मुंहिंजो ॾेर आहे, उनखे मारजी वियो। बाबा साईं अहिड़ा सॼा ज़ुल्म चलाए मूंसां हक़ कयो, मूंसां न हक़ न कयो।
1: जी फायरिंग में मारजी वियल चार ॼणनि जे वारिसनि जो नकी धरणो लाश बाबे एहतजाज कंदा जवाबदारनि असांजे माण्हुनि खे अॼोके वाके समेत असां अठ माण्हू क़तल थी चुका आहिनि, पुलिस कातलनि खे गिरफ़्तार करे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारन के पोलियो खां बचाव जा कतरा जरूर पियारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ऐं इनन जे ख्वाबन के उडाम ॾियनि था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माज़ूरी।
6: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं।

0: तू लग रहा लाए खुशखबरी छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 03-347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
0: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786।
0: जी हा 03135-25-786।
5: GAFM रेडियो

ही रहनुमा सो ही राह रद करे सो ही रहनुमा वतो इज़ो मंतशा वतो ज़ुलो मंतशा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। GFM 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम रसनी आनसान करे आऊं या जो पहिंजो आरजे गुलाम कादर गिरानो जी समन केड़ा हाल आई नवा जाऊं मैं तकरी तो ठीक ठाक चाक चंगा भला हुंदा असन जुदली दुआऊं इन एक तमन आऊं ता रब ताला तवा के पेंजे हिफ्ज अमान ई बाजे में रखे हमेशा गुलन जी अटलंदा ई महकंदा रहो। समन के बुधलो तो प्रोग्राम रस रिहान जो आगाज थी चुको आ है पंहिंजो ई साथ जुड़ी चुको आहे जेको जारी सरे रहंदो हाणे खां वठी ठीक राति 9 बजे ताईं। हिन सफ़र में कंदासीं खोड़ सारियूं कचहरियूं शामिल कंदासीं मिक्स मौसीकी जरंग ऐं घर वरी शामिल हूंदा अवां जा सनी अवां जा पैगाम अवां जा एस एम एस जेके मां ॾियारे माणींदा 888-1 ते जी हा 88-81 ते मातली मातली खां ॿाहिरि जिते जिते असांजो मुसाफ़िर आवाज़ ऐं आधार वञे ॻोठ वञे शहर वञे वाहन वञे वसंदीन में पहुची रहियो आहे उन्हनि सभिनी समाजुनि खे वेलकम ऐं भली कार चवंदासीं ख़ुशि आमदीद जी आयानूले। अॼु जी तारीख़ मूंखे ॿुधंदा हलूं त 23 सेप्टेंबर 2026 अरबा जो ॾिहाड़ो ई अरबा जे ॾिहाड़े जा शाम जा बहितरीन लम्हा हसीन लम्हा अवां सां गॾु गॾु हूंदासीं ऐं उमेद करी तव्हांजो साथ सां जुड़ियो रहंदो बरक़रार रहंदो सलाड़ियो रहंदो ठीक हिननि ॿिनि कलाकनि ताईं। प्रोग्राम रस रिहाण जो बाक़ायदा आगाज कंदासीं हिकड़े सॉन्ग सां राग जी राणी साईं आबदा परवीन जे नसूणे ऐं मन मोहिणी आवाज़ सां वक़्त जो अहसास शाम जा 7:16 थी चुका आहिनि।

वेलकम बैक एक दफ़ो ॿीहर भरी कार रही ख़ुशामदीद चवंदासीं तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम रस रिहाण में रस रिहाण पेश कयो वञे पियो जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइ स्टूडियो मां हिन सफ़र में आऊं मुंहिंजे सफ़र जो साथी आर जे गुलाम कादर घिराणो वक़्त जो अहसास शाम जा 7:24 थी चुका आहिनि हाणे हाणे ट्यून ऑन कयो आहे जी एफ एम तव्हांखे भली कार चवंदासीं ख़ुशि आमदीद चवंदासीं भली भली कार चवंदासीं

मौसम आहिनि यकीन जेके गर्मियूं आहिनि ऐं कुझु ॾींहं जेके पहिरीं गर्मी हुई हुन में हाणे बिल्कुलु थोरी घटि ते अची वई आहे। आहिस्ता आहिस्ता जेका थधिकार थींदी पई वञे। इंसान इंसान वीचारो छा सहे, कोशिश कंदा करियो गर्मी खां बचंदा करियो, पंहिंजो पाण खे बचाईंदा करियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि गर्मी खां बचाईंदा करियो। ॿारड़ा स्कूल वञनि था, परे परे पंधु वञनि था, ऐं स्कूल मां जॾहिं उन्हनि जी छुट्टी वग़ैरह थिए थी त उन वक़्तु यकीन तेज़ गर्मी हूंदी आहे। सो असांखे एहतियात करणु घुरिजे पंहिंजो पाण जो ऐं पंहिंजे औलाद जो ऐं पंहिंजे नंढड़नि गुलड़नि जहिड़नि ॿारनि जो। कोशिश कजे वध खां वध पाणी जो इस्तेमालु कजे ऐं पंहिंजे आस पास बि नज़र डोड़ाइजे त जिते वण आहिनि जिते दरख़्त आहिनि उते बि पाणी जा थांव भरे रखजनि। छोजो जीअं असांखे बि पाणी जी तलब हूंदी आहे, असांखे बि पाणी जी प्यास हूंदी आहे, उअं ई हर साह वारे खे बि पाणी जी प्यास हूंदी आहे। जीअं पखी पुखण जीत जहिड़ा आहिनि उहे बि पाणी पी सघनि। इलाही वॾो सवाबु आहे कंहिंजी उञ विसाइण, कंहिंखे पाणी पीआरण, कंहिं प्यासे खे पाणी पीआरण, ऐं पाणी जो क़दुरु उन प्यासे खे हूंदो आहे। ऐं असां इंसान जेका शइ असां वटि जाम हूंदी आहे असां वटि वरी उन जो क़दुरु नाहे हूंदो आहे। अलाए त छो बसि छा कजे। हिन वक़्तु जेका पेट्रोल जी घटिताई आहे, कमी आहे, जेका रेट जा रोज़ जा जेके नवां नवां रेट आहिनि हिन बि असांखे परेशान करे छॾियो आहे। त असांजो बि दिमाग़ घटि कमु कंदो आहे। पोइ जेकॾहिं तव्हां बि शामिलु थियणु चाहियो था त बिल्कुलु शामिलु थी सघो था। शामिलु थियण जो तरीक़ो आसान, सभ खां पहिरियों करणो इहो आहे जो तव्हांखे पंहिंजो मोबाइल खणो आहे। मोबाइल जे राइट या क्रिएट एसएमएस में ईंदा, जिते सभ खां पहिरियों MTI लिखिजो, हुन खां पोइ थोरो स्पेस ॾिजो, पंहिंजो नालो, पंहिंजो ॻोठु, पंहिंजो शहर, पंहिंजो वाहन, पंहिंजे वसंदी जो नालो ज़रूरु लिखिजो जिते तव्हां रहंदा आहियो। ऐं प्रोग्राम जे हवाले सां कुझु चवणु चाहियो, को कमेंट्स का राय, बिल्कुलु हुन SMS खे मुकमल टाइप करे माणींदा 8881 ते। जी हा, 8881 ते, 8881 ते वञा काफ़ी सन्या काफ़ी पैगाम पहुतल आहिनि जिन खे वक़्तनि ब वक़्तनि ज़रूरु शामिल रखंदासीं। पर हिकिड़ो सॉन्ग प्ले कयो आहे मुमताज़ मौलाई जो, बहितरीन आवाज़ आहे। उमेदु करियूं था हीउ सॉन्ग अव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। तूं मिली वञे मूंसां, ज़बरदस्त आवाज़ मुमताज़ मौलाई जो।

जी जी दोस्तों मोबाइल ते एसएमएस कन पे उनन के गुजारिश कन दस ब्राय मेहरबानी अवा 8881 ते एसएमएस कन दा त अवा जी मेहरबानी थिंदी वही शामिल रखना सी अदरवाइज सो सॉरी।

0: Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
2: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300296243। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: खुशखबरी, खुशखबरी। अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस, दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-252-5786।
2: जी हा, 2-331-5-5-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
8: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज,
8: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वेलकम बैक, एक दफा मेरे भाई कर रही खुशी आमदीद चौदह के पंजे प्रोग्राम रस रिहान में रस रिहान पेश कर पंजे GFM 91.4 मातली जे लाइव स्टूडियो में इन सफर में आयो आवा जे सफर जो साथी आर जे गुलाम कादर गिरानो मुक्त जो एहसास शाम जा 7:38 थी चुका है। यकीनन हाणे शाम न रही है, शाम हाणे आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील थी वई है। मातली जी जेका रात आहे उन जी छा ॻाल्हि कजे, थदड़ियूं थदड़ियूं हवाऊं लॻंदियूं आहिनि ऐं गॾो गॾु जॾहिं शानवाज़ ख़ासि खेली असांजो टेक्निकल साथी जे हथनि में गरमा गरम चांहि जो कप ॾिसूं त पोइ यकीन जेका शाम जेका आहे उन आहिस्ता आहिस्ता जेका राति थींदी आहे थदड़ी थदड़ी ऐं उन में वरी चार चंड लॻी वेंदा आहिनि। सो महिरबानी आहिनि शानवाज़ ख़ासि खेली तव्हांजे हथनि में चांहि जो कप ऐं अवां शीशे जे हुन पार खे मूंखे इशारो पिया करियो। महिरबानी आहिनि अवां जूं अवांजा सनिया अवांजा पैगाम अवांजा SMS का बि तइदाद में ऐं सवाल जे तरफ़ हलंदासीं। लास्ट प्रोग्राम में जेको सवाल हो यकीन ॿिनि प्रोग्राम में जेका ग़लती थी आहे मूंखां उहा आईंदा न थींदी। ऐं सवाल जेको मूं रखियो त इंसानी जिस्म जो कहिड़ो उज़ू आहे जंहिंजे कटण सां रत नाहे निकिरंदो, जी हा यकीनन काफ़ी दोस्तनि जा सही जवाब पहुता। काफ़ी दोस्तनि चयो नूह, काफ़ी दोस्तनि चयो वार, अव्हांजा बिल्कुलु सही जवाब पहुता। अॼु जो जेको सवाल आहे अव्हां असांखे ॿुधाए सघो था? जी हा बिल्कुलु, अव्हां सवाल खे नोट कंदा, नोट फरमाईंदा। दुनिया में आबादी जे लिहाज़ में वॾो मुल्क कहिड़ो आहे? जी हा, दुनिया में आबादी जे लिहाज़ खां वॾे में वॾो मुल्क कहिड़ो आहे? कहिड़े मुल्क में आबादी घणे में घणी आहे? तव्हां असांखे ॿुधाईंदा, इन जो जवाब ॾींदा। तव्हां जवाब ॾींदा त ठीकु आहे, न त वेंदे वेंदे आऊं ज़रूरु अव्हांखे जवाब ॾींदुसि। अव्हांजा सनिया अव्हांजा पैगाम काफ़ी तइदाद में पहुतल आहिनि, यकीन हाणे खां ई शामिल रखंदासीं। ॾाढू शहर ॻोठ हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी खां असांखे यादि कयो आहे। हाजी अब्दुला लाशारी, करीम बख्श लाशारी एंड हाजी गुल हसन गुल लाशारी, अव्हांखे भलीकार चवंदासीं। अव्हां ॾाढू शहर ॻोठ हाजी मोहम्मद रहीम लाशारी खां असांखे यादि कयो, अव्हांखे भलीकार चवंदासीं। महिरबानी आहिनि अव्हां जूं। परवेज सोलंगी फ्रॉम कबूलपुर, एहसान सोलंगी, आशिक सोलंगी, मंठार सोलंगी, अरसलान मीरजत ऐं रहमान मीरजत, सर कीअं आहियो? ऐं ठीकु ठाक आहियां। महिरबानी आहिनि, अव्हांखे बि भलीकार चवंदासीं। शहर गुलाब लगारी ॻोठ बशाम खान रिंद खां असांखे यादि कयो आहे। शाइर गाज़ी खान रिंद, रिज़वान अली रिंद, फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद, नंढड़ी कोनेन ज़हरा, अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहिया आहियूं ऐं प्रोग्राम जी कंपेयरिंग अव्हांजी बहितरीन आहे। बैकग्राउंड चेंज कंदा त वाह वाह थी वेंदी। यकीन अव्हांजी जेका तजवीज़ आहे, अव्हांजी जेका राय आहे, असां पंहिंजी अखियुनि ते रखी ऐं फौज़िया खे अवां ॿुधणु चाहियो आहे। यकीन फौज़िया खे असां प्ले कंदासीं। महिरबानी आहिनि अव्हां जूं। ऐं असांखे यादि कयो आहे मुश्ताक लाशारी, बाबू लाशारी, जामोट फार्म रीचल खां अव्हांखे भलीकार चवंदासीं। अलाह तोखे आणे दिल तोखे पई सारे, फौज़िया सुमरो प्ले थी चुकी आहे। काफ़ी SMS आहिनि अव्हांजा, अमीर बख्श छलगिरी एंड सईद अली छलगिरी, अव्हांखे बि असां भलीकार चवंदासीं। एंजॉय करियो ही सॉन्ग ऐं मोटी मिलंदासीं हिन सॉन्ग खां पोइ। रहिजो असां सां गॾु गॾु जो GFM 90.4 मातली जो आवाज़, सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज

0: कंदी
1: औलाद जो न थियण और तुंहिंजे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3-41-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

estuvo bien aplicado y José Amadid, chavandas, estamos aquí en el programa, Rasa Rihanna, me. Yo copé es que ponía GFM 90.4 Matali Jalive Studio, en el safar me hago, en el safar de Satyar, J. Gulam, que adriquen un vacto, yo es adra, te ya se te lagui, Punjab, mente, dicho que hay. सवाल एक दफ़ो वरी पवन पहुंचा इंदू तक बुधा सको तो दुनिया में आबादी के लिहाज में वो मुल्क कहो है जी हाँ आबादी के लिहाज के हिसाब से वे में वो मुल्क कहो है काफ़ी दोस्तों जो जवाब पहुंचने शुरू थी अवजा सनी अवजा पैगाम जी हाँ हाँ ट्यूनल किया है जी एफ एम तक भलीकार चवंदी खुशी आमद ईद चवंदी गुरहाजी वाहिद डो गिराणो का गुल मोहम्मद गिराणो बिलावल गिराणो नबील अहमद गिराणो हाजी पीरू गिराणो एंड अनवर गिराणू अवे भलीकार चवंदी भलीकार चवंदी खुश आमदीद चवंदी मोहम्मद रहीम गिराणू अजीब अस आजा कंदी अवं मोहम्मद उर्स चांडियो के प्ले कंदा तो वाह वाह यकीन नेक्स्ट सॉन्ग मोहम्मद उर्स चांडी जो है मल्हा दोस्त लिखो है दरगाह मंदर पीर का अब्दुल अजीज मल्हा एंड गुल हसन मल्हा अदा अली नवाज सोडो कराची रफीक मल्हा अवां जलाल चांडियो के बुधन चाहियो अवां के बस भलीकार चवंदासी कोशिश कंदासी त जलाल के प्ले करे न त उर्स चांडियो अवां जी फरमाइश ते बिल्कुल इस्लाम कोट का असं याद किया है नाज निसार अहमद अबड़ो करीम बख्श अबड़ो साई गुलाम कदर साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम सुठो है अस बनी ते वेही बुधू पया तो मेहरबानी है अवां पेंजी जमीन ते वेही असं के बुधो पया शेर बाला लग दरगाह मंदर पीर का वंस अगेन अब्दुल अजीज मल्हा गुल हसन मल्हा अदा अली नवाज सोडो कराची एंड रफीक मल्हा अदा असां के जलाल चांडियो जो सॉन्ग जरूर बुधराइजो त महिरबानी थींदी महिरबानी आहिनि महिरबानी जी सुण साईं का बि ॻाल्हि न आहे इनशाला कोशिश कंदुसि करीम बख़्श लाशारी अदा आबादी जे लिहाज़ खां वॾे में वॾो मुल्क महिरबानी आहिनि अवां जूं अवां खे बि असां भलीकार चवंदासीं अवां जो जवाबु अवां कोशिश कई आहे इनशाला वरी बि ट्राए कजो त अञा बि आहे जेको जेको सही जवाबु आहे त ॿियो आहे महिरबानी आहिनि अवां जूं ऐं नऊं पको स्टाफ खां हाफिज़ मोहम्मद गिराणो मोहम्मद हारून ऐं गिराणो मोहम्मद अली गिराणो ऐं शहज़ाद अली गिराणो साहब अवां असांखे यादि कयो अवां खे असां सलाम अचा भलीकार चवंदासीं अवां सलाम चया आहिनि वालेकुम असलाम महिरबानी आहिनि अवां सभिनी साथियुनि जूं ऐं लाला खान समूह यकीन लाला खान समूह जेके 18 सेप्टेंबर ते अवां जूं जेके मोहबतूं असांखे मिलियूं हैदराबाद जी हवाउनि में काफ़ी दोस्त मौजूदु हुआ ऐं लाला खान समूह अवां जी सालगिराह में अवां असांखे इनवाइट कयो ऐं ॾाढी ख़ुशी थी मुम्मू नाचीज़ खे अवां इनवाइट कयो ऐं हुते काफ़ी मोहबती माण्हू मौजूदु हुआ जिन सां मिली असांखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं महिराण मौज ग्रुप जा जेके दोस्त हुआ

जो बुधूं पया गोठ मोहम्मद अजीम खास खेली का किंग नदीम खास खेली एन एस खास खेली गुलाम हुसैन खास खेली सिंध पुलिस मिठाशियो सफा लश पया करो अच्छा मेहरबानी आई ना वां जी ओमा के बसा भली कार चवंदा सी किंग नदीम खास खेली साहब गोठ हाजी सहतो खास के याद के सुल्तान सहतो शहबाज खास खेली एंड साले सोलंगी असद सहतो उस्ताद मुश्ताक टू साईं अशरफ खास केली साहब हाजी सहतो साहब अवां के बसा भली कार चवंदा सी असन जे टेक्निकल साथी शाहनवाज खास केली के अवां सलाम छे एनु वालेकुम अस्सलाम मेहरबानी आहे नवां जो लख थोरा वां जा अवां जा सनिया वां जा पैगाम काफी तादाद में मोहम्मद उर्स चांडियो बिल्कुल प्ले थी चुका है तमाम बेहतरीन सॉन्ग अगे ते एड़ो कोन हुए तो अगे ते

टेक आफ्टर टेक मुझे लब लेके आए शेला गुलजू आवाज इसमें ला गया आसिफ कुंभर वहां से याद कयो आए रानीपुर गंबट दाउसिन चाचड़ कंदकोट दादा खालिद कमरानी टंडो आलम मरी उस्ताद वीरमचर सांगड़ अवां के भलीकार चवंदासीं फ्रॉम नो पको चयो पिया त असांखे निजी कंपनी में आयूं ऐं पको ते भई अवां खे ॿुधूं पिया भलीकार चवंदासीं अवां खे मोमंद जुमन अबड़ो अहमद अबड़ो मुनवर अबड़ो अवां खे असां भलीकार चवंदासीं ख़ुशामदीद चवंदासीं करीम बख़्श लाशरी अदा आबादी जे लिहाज़ खां वॾे में वॾो मुल्क अवां जो जवाबु बिल्कुलु लाशारी अवां खे भलीकार चवंदासीं वंस अगेन अवां जा ॿ नाला लिखिया आहिनि ऐं जेको लास्ट जेको आहे उहो सही आहे

0: आहे त ही धरणा एहतजाज शुरू करे छॾींदा आहिनि। के बात ते चढ़ाई बर्बादी जी सियासत करे रही आहे। समाव वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ताला तार जी पर चयो आहे त कुहाड़ सूरतयाल ख़राब आहे, सिमिक टॉक ठहिण में रुधल आहिनि। वफ़ाक़ खां पैसा न मिलण जो तासुर बि ग़लति आहे। के पी हुकूमत 13 सालनि में को बि कम नाहे कयो ऐं सूबे खे तबाही कंदे ते पहुचाए छॾियो आहे।
1: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असीं चाहियूं था त मार्च बि थिए ऐं उहो पुरमुन बि हुजे। हिकु हुकूमती जथो प्रोपेगेंडा करे रहियो आहे त असां हुकूमती इदारनि ते हमिलो करण वञी रहिया आहियूं। जेको हुकूमती टोलो बयानियो ठाहे रहियो आहे हुन जो बंदोबस्तु करणो पवंदो। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त असांखे ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हि करणी आहे, मसलनि जो सियासी हल ॻोल्हणो पवंदो। कुझु माण्हू सियासी मसलनि जो सियासी हल नथा चाहिनि।
0: पीटीआई जे 27 सेप्टेम्बर वारे इम्कानी मार्च खे मुंहुं ॾियण जूं तयारियूं। पंजाब हुकूमत समूरे सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो। रेंजर्स जूं ख़िदमतूं बि तलब। पंजाब जी घरू वज़ारत मूजिब रावलपिंडी, अटक, जहलम ऐं मियांवाली में रेंजर्स मुक़रर थींदी। पंजाब हुकूमत पारां 27 सेप्टेम्बर ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मोबाइल फोन ऐं इंटरनेट सर्विस मुअतल करण जी दरख़्वास्त। लाहौर खां इस्लामाबाद मोटर वे ज़रिए माल बरदार गाॾियुनि जे इस्लामाबाद में दाख़िला ते बि पाबंदी। पिशावर मोटर वे अॻुवाट बंदि कयो वियो।

लेवीअ जो पेट्रोलियम क़ीमत सां को वास्तो न आहे। हुन जी ख़ात्मे लाइ ॿिनि महीननि खां जदोजहद जारी आहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहीमुर रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पेट्रोल सस्तो न थियो त मैशत तबाह थी वेंदी। लेवीअ जी ख़ात्मे लाइ हुकूमत ॾिनल तजवीज़ुनि ते अञा ताईं को जवाब न आहे ॾिनो।

लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद बक्का दिफाई माहिदे तहत पहिरियों सेक्रेटरी जनरल मुकरर। पेडई तर्जमान चयो आहे त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद मक्का माहिदे तहत कायम इतिहाद जे जनरल सेक्रेटरी जी क्यादत कंदो। मक्का माहिदे तहत इतिहाद जो जनरल सेक्रेटरी रियाज में कायम कयो पियो वञे।

0: होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरु सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरु सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड, अल मदीना होटल जे पोयां, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 03704495244।
0: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

वेलकम बैक एक दफा मेरे भली आ रही खुश आमदीद प्रोग्राम प्रोग्राम रस रिहान रस रिहान पेश कर GFM 90.4 मातली जलाए वे स्टूडियो में करीम बख्श लाशारी साहब अवन जो जो एसएमएस पहुंचो है यकीन हाँ हाँ मु 2025 के सर्वे मुताबिक अवन जो जो जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब है मेहरबानी है ना अवन जो असा जो बुक पियल हो काफी पुरानो हो तो मेहरबानी है करीम बख्श लाशारी साहब सजन सांगी जे वांद मां असांखे यादि कयो आहे गुलाब गुल मिठी थर पारकर खां अवां चयो पिया दुनिया में आबादी जे लिहाज़ खां वॾे में वॾो मुल्क चीन आहे महिरबानी आहिनि अवां जूं ऐं लाला खान समूह साहब अवां असांखे यादि कयो आहे महिरबानी आहिनि अवां जूं अवां सलाम चया आहिनि असांजे टेक्निकल साथी शाह नवाज़ ख़ासि खेली ऐं रब नवाज़ ख़ासि खेली जे लाइ वालेकुम असलाम नदीम किंग नदीम खसकली साहब अवां असांखे सलाम चयन वालेकुम असलम ऐं गुलाम हुसैन खसकली सिंध पुलिस ऐं नंढड़ो मुज़म्मल हुसैन खसकली अवां सां गॾु गॾु अली हसन गिराणू एज़म गिराणू अवां असांखे सलाम चयन वालेकुम असलम लोमपोको स्टॉप खां नई ममन खान खां असांखे यादि कयो आहे परदेसी बशीर नोतकाणी आज़ान अली नोतकाणी अमरोज़ मॾो अमजद अली नोतकाणी ऐं कुनरी खां चोवन कुमार कोल्ही अवां असांखे यादि कयो अवांखे भलीकार चवंदासीं ऐं डॉक्टर अनीता ऐं संगीता पारस अवां सां गॾु गॾु ऐं नाज़ फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी अवां असांखे यादि कयो आहे झोल खां अवांखे बि असां भलीकार चवंदासीं ख़ुशी मोहम्मद ऐं कपरी साहब अवां असांखे यादि कयो आहे झुडे खां महिरबानी अवां जूं ऐं ॿिए लधा ॻोठु साजन मीरजत खां उस्ताद साजन मीरजत दीदार मीरजत अवां सलाम चया आहिनि उस्ताद गुल मोहम्मद गिराणू खे अवां सलाम चया आहिनि ऐं आल डियर्स खे अवां सलाम चया आहिनि साईं भूरेश शाह खे मातली खां असांखे यादि कयो आहे मोमल अवां सलाम चया आहिनि वालेकुम असलम ऐं प्रोग्राम मूंखे अवां पसंदि कयो आहे ऐं नामालूम माग खां मुस्कान अवां सलाम चया आहिनि अवां चयो आहे त कोई महिरबानी आहिनि अवां जूं अब्दुल हुसैन गिराणू अवां सलाम चया आहिनि वालेकुम असलम ऐं राशिद सोलंगी अब्दुल करीम सोलंगी अवां सां गॾु गॾु असांखे यादि कयो आहे ॻोठु मोहम्मद अज़ीम खासकेली खां किंग नदीम खासकेली अवां चयो आहे त सलाम चइजो सर यूनस वकारी साहब दानिश वकारी आर जे मोहम्मद खान महरी इंजीनियर रब नवाज़ खासकेली शाह नवाज़ खासकेली ऐं अब्दुरज़ाक दर्स जे लाइ ऐं मक़सूद खोसे खे अवां सलाम चया आहिनि वालेकुम असलम चमन अली मीर अली जो आवाज़ प्ले थी चुको आहे राति जिन सांत में

बि ॿीहर भली कार ऐं ख़ुशी आमदीद चवंदासीं तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम रस रिहाण में। रस रिहाण बिल्कुलु रवां दवां ऐं पंहिंजी मंज़िल मक़सद जी तरफ़। ताज मोहम्मद ख़ासखेली, असद ख़ासखेली एंड पाग स्टाप खां असांखे यादि कयो। सलाम चयनि, वालेकुम असलाम, महिरबानी आहे नवां जूं। मक़सूद अली खोसो साहिबु, अवां चयो पिया त हैदराबाद खां वेंदी अवांजो प्रोग्राम ॿुधां पियो, तव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं, महिरबानी आहे नवां जूं। दोस्त मोहम्मद लगारी, गुलाम कादर लगारी साहिबु, अवां असांखे यादि कयो, ॻोठु हाजी हमज़ा लगारी नियर बारण, अवां सलाम चयनि, वालेकुम असलाम। शोनी अवां असांखे यादि कयो आहे हैदराबाद खां, सलाम चयनि, वालेकुम असलाम। आमिर जिंझी साहब, अवां सलाम चयनि, अवां इलाही परे भई असांखे ॿुधो पिया आहिनि, पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारायो आहे। अवांजूं मोहबतूं आहिनि, अनमोल मोहबतूं आहिनि अवां सभिनी साथियुनि जूं, जेके जेके दोस्त असांखे कनाइनि पिया ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारे रहिया आहिनि। ऐं जिन जिन दोस्तनि खे ख़बर आहे त SMS कीअं कबो आहे, त उन्हनि खे अॻियां SMS तरीक़ो ॿुधाईंदासीं। अव्हांखे करणो इहो जो सभ खां पहिरियां पंहिंजो मोबाइल खणो, मोबाइल जो राइट या क्रिएट SMS में वेंदा, जिते सभ खां पहिरियां MTI लिखिजो। उन खां पोइ थोरो स्पेस ॾिजो, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठु, पंहिंजे शहर, पंहिंजे वहण, पंहिंजे वसंती जो नालो ज़रूर लिखिजो, जिते तव्हां रहंदा आहियो। ऐं सवाल जो जवाब ज़रूर ॾिजो त आबादी जे लिहाज़ में सभ खां वॾो मुल्क कहिड़ो आहे। काफ़ी दोस्तनि जा सही जवाब पहुतल आहिनि।

चेक ऑफ चेक मास्टर फतेह जो आवाज अवे प्ले कर ऐसो गाड़े वगे वारे के जबरदस्त सॉन्ग है अवज प्ले करी अवजा पैगाम काफी तैदाद में 88 81 दोस्त मैसेज आया

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बीट यानी ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट फॉर्मूला आपकी चिल्क को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वजे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवा हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासी। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पक छा चाहियो छितन त के ते 50 सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो।

0: गुलामली रोड मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
3: छा वा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
0: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
3: 0331-252-5786।
0: जी हाँ, 2315-5576।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

वेलकम बैक। एक तो बेर भली कर रही खुशा मदीद चवंदा तो के पिंजे प्रोग्राम रसरियान ही प्रोग्राम रसरियान बिल्कुल आखिरी मरहले ने आखिरी लम्हन में तकड़ तकड़ में वजा एसी में वजा सनी वजा पैगाम शामिल रखंदा सी असन के याद कयो है। नोहटो जी नगरी का फकीर आमिर जिंजी एंड अतर हुसैन जिंजी अवां सलाम चयन वालेकुम अस्सलाम मेहरबानी लख थोरा अवां जा मोहब्बतूं आहिनि अवां जूं असांखे यादि कयो ॻोठ हयात सोलंगी खां सैद अच्छा ॻोठ हयात सोलंगी बदीन खां सैद जुमन शाह बुखारी अवांखे बि असां भलीकार चवंदासीं। सैद बचल शाह बुखारी महिरबानी आहिनि अवां जूं अवांखे बि असां भलीकार चवंदासीं। सैद ज़मान शाह सैद ज़मीर हुसैन शाह बुखारी साहब अवां चयो आहे त लाजवाब प्रोग्राम आहे महिरबानी आहिनि अवां जूं अवांखे बि असां भलीकार चवंदासीं। जवाब अवांजो आहे चीन कवि दोस्तनि जा सही जवाब ऐं कवि दोस्तनि जा ग़लति जवाब पहुतल आहिनि। महिरबानी आहिनि अवां जूं हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कंदासीं पर कुझु नाला अवां जा कुझु मैसेज अवां जा जेके अञा बि कंप्यूटर स्क्रीन ते मौजूदु आहिनि। ॻोठ हाजी मिहार खान लगारी खां असांखे यादि कयो आहे मौला बख्श लगारी एंड अज़हर अली लगारी प्लीज मुमताज़ लाशारी ज़रूर प्ले करण जी कोशिशि कंदासीं मुमताज़ लाशारी खे। ॻोठ सोराब निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी ऐं नंढड़ो अहसान मंगण निज़ामाणी अदा प्रोग्राम बहितरीन आहे एंड म्यूज़िक लाजवाबु आहे महिरबानी आहिनि अवां जूं ऐं अवां जूं समातूं सुठियूं आहिनि। अब्दुल हुसैन गिराणू शहज़ाद अली गिराणू राशिद सोलंगी अवांखे बि असां भलीकार चवंदासीं। साईं इस्माइल सोलंगी अवां बि असांखे पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियारायो वॾा वण अवां जा। ॾोट मोहम्मद अज़ीम ख़ासकेली खां साईं ॾिनो ख़ासकेली होटल वारो एंड अमीन वाढो साहिबु अवां असांखे यादि कयो ऐं पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾियारायो महिरबानी आहिनि अवां जूं।

काफ़ी अवन जा सनिया काफ़ी अवन जा पैगाम बे पेज के रिफ्रेश के बाद एसएमएस आई अवन जा सनिया जे का इन वे ग्राउंड साहब मेहरबानी आई अवन जो।

किंग नदीम जान खास के लिए जो एसएमएस पोत हो जो एसएमएस मोकिल वो मुकम्मल शामिल छो न कर नदीम खास के लिए साहब कुछ पॉलिसियों उन्होंने पॉलिसी के मद्देनजर रखी प्रोग्राम कहना सो मेहरबानी जो अड़ी का भी गाल जो एसएमएस अनकम्प्लीट पढ़ो है सॉरी माफी जो तलब कर रहा फायजा अली जो आवाज़ अवन जला प्ले किया है जबरदस्त सॉन्ग है फायजा अली जो आवाज़।

टेक आफ्टर टेक। मास्टर मंजूर जो आवाज़ प्ले कयो अवां जे लाइ हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे। वेंदे वेंदे वञा सनी आहे मुंहिंजा पैगाम बेवस रमू नज़ीर वज़ीर जुमू शबीर फ्रॉम नऊं दुम्बालो शो वी आई पी आहे। अच्छा, महिरबानी।

ऐं समय प्रोग्राम रस्ते रिहाइण जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। वेंदे वेंदे अव्हांखे सवाल जो जवाब ॾियणो आहे। सवाल इहो त दुनिया में आबादी जे लिहाज़ में सभ खां वॾो मुल्क कहिड़ो आहे, त जंहिंजो सही जवाब भारत आहे। पहिरियों जेको मूं पढ़ियो त हुन में बिल्कुलु जेको जवाब हो चीन हो। ऐं जंहिं वक़्तु कंहिं दोस्त मूंखे निशानदेही कराई ऐं पोइ हुन खां पोइ असां जेका 2025 जी सर्वे चेक कई, भारत जी जेका सर्वे आहे 1,46 करोड़ आवाम ऐं चीन जी जेका आहे आबादी 1,41 करोड़। तो हिन वक़्तु जेको टॉप ते आबादी जे लिहाज़ में मुल्क आहे उहो आहे इंडिया। कवि दोस्त न सही जवाब पहुता, महिरबानी आहे नवां जो पार्टिसिपेट कयो, पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारियो, प्रोग्राम खे ॿुधो ऐं असांखे बर्दाश्त कयो। ऐं वक़्तु हुन जॻह हुन मोड़ ते पहुतो आहे जिते हुन चाहींदे अव्हां खां वठंदुसि इजाज़त। अगरि हयाती जो हार सलामत रहियो ऐं साह जे सघे साथ ॾिनो त इनशाला ईंदड़ हफ़्ते पंहिंजी मुलाक़ात थींदी सेम टाइम सेम चैनल ते। तेसिताईं पंहिंजो ऐं पंहिंजे चाहींदड़नि जो रखिजो ख़्यालु, वधि खां वधि रखिजो हुन जो ख़्यालु जेको रखे थो अव्हां जो ख़्यालु। दुआनि जे लाइ जॾहिं बि त खणो त मूं नाचीज़ ग़ुलाम क़दर गिरणो ऐं GFM जी पूरी टीम खे पंहिंजी दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो। हुन खां विछण महिल सो इहे चयमि, रब हुनखे पंहिंजे अमान में रखिजांइ। साथ हलंदो रहे, लाट ॿरंदी रहे, जॾहिं पेर तेॾा ख़ैर। अलाह हाफ़िज़।

0: दहशतगर्द करार डिनो। असां त पाण दहशतगर्दीअ जो निशानो बणिया आहियूं। असां दहशतगर्द न पर जारियत ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ा करे रहिया आहियूं। सुप्रीम लीडर खे बिना कंहिं जवाज़ जे शहीद कयो वियो। वाज़े कयो त एटमी हथियार न ठाहिया वेंदा पर को फ़ाइदो न थियो। ईरान खे एटम बम न पर एटमी तवानाई जी ज़रूरत आहे। एटमी हथियार त इसराइल वटि बि आहिनि, पोए पाबंदियूं ईरान मथां छो? पंहिंजे वतन जी दिफ़ा लाइ कंहिं जी इजाज़त जी का ज़रूरत नाहे। ईरानी सदर जे ख़िताब दौरान अमरीकी नुमाइंदो वॉकआउट करे वियो।
1: ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वकाई चयो आहे त कतरी चाकड़ी ज़रिए अमरीकी वफ़द सां राब्तो थियो। ईरान पंहिंजो मौक़िफ़ ऐं शर्त अमरीका ताईं पहुचाया। ईरानी शर्तनि में सभिनी माज़न ते जंग, सामूंडी नाकाबंदी, इक़्तिसादी जंग जो ख़ात्मो ऐं मुंजमद ईरानी असासनि जी बहाली शामिल आहिनि। अमरीका खे ईरानी वफ़द लाइ ख़ासि हिफ़ाज़ती क़दमनि जी का बि दरख़्वास्त नाहे कई वई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी तक़रीर दौरान ईरानी वफ़द गडि॒यल क़ौमनि जे इजलास मां वॉकआउट कयो।
0: जड॒हिं महिशत तरक़ी कंदी आहे त ही धरणा ऐं एहतजाज शुरू करे छॾींदा आहिनि। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा हुकूमत इस्लामाबाद ते चढ़ाई, तबाही ऐं बर्बादीअ जी सियासत करे रही आहे। सुदसमा वफ़ाक़ी वज़ीर अतातारड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अतातारड़ चयो त कुहाट ऐं हंगूअ में सूरतहाल ख़राब आहे ऐं के पी हुकूमत जा ज़िमेवार वरी टिकटॉक ठाहिण में रुधल आहिनि। वफ़ाक़ खां पैसा न मिलण जो तासुर बि ग़लति आहे। के पी हुकूमत 13 सालनि में को बि कम नाहे कयो ऐं सूबे खे तबाही कंदीअ ते पहुचाए छॾियो आहे।
1: पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त असीं चाहियूं था त मार्च बि थिए ऐं इहो पुरअमन बि हुजे। हिकु हुकूमती जथो प्रोपेगेंडा करे रहियो आहे त असां हुकूमत इदारनि ते हमिलो करण वञी रहिया आहियूं। जेको हुकूमती टोलो बयानियूं ठाहे रहियो आहे उन जो बंदोबस्त करणो पवंदो। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो, असांखे ख़बर आहे त कंहिं सां ॻाल्हि करणी आहे। मसइलनि जो सियासी हल घुरणो पवंदो। कुझु माण्हू सियासी मसइलनि जो सियासी हल नथा चाहिनि।
0: पीटीआई जी 27 सेप्टेम्बर वारे इम्कानी मार्च खे मुंहुं ॾियण जूं तयारियूं जारी। पंजाब हुकूमत समूरे सूबे में कलम 144 लागू करे छॾियो। रेंजर्स जूं बि ख़िदमतूं तलब। पंजाब जी घरू वज़ारत मूजिबि रावलपिंडी, अटक, जहलम ऐं मियांवाली में रेंजर्स मुक़ररु थींदी। पंजाब हुकूमत पारां 27 सेप्टेम्बर ते मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मोबाइल फोन ऐं इंटरनेट सर्विस बि मुअतल करण जी दरख़्वास्त। लाहौर खां इस्लामाबाद मोटरवे ज़रिए माल बरदार गाॾियुनि जी इस्लामाबाद में दाख़िला ते बि पाबंदी लागू। पिशावर मोटरवे अगवाट बंद कयो वियो।
1: लेवी जो पेट्रोलियम क़ीमत सां को वास्तो न आहे। इन जे ख़ात्मे लाइ 2 महीननि खां जिदोजहद जारी आहे। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त पेट्रोल सस्तो न थियो त मईशत तबाह थी वेंदी। लेवी जे ख़ात्मे लाइ हुकूमत ॾिनल तजवीज़नि ते अञा ताईं को जवाब न आहे ॾिनो।
0: लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद मका दिफ़ाई मुआहिदे तहत पहिरियों सेक्रेटरी जनरल मुक़रर। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नोमान महमूद मका मुआहिदे तहत क़ाइम इतिहाद जे जनरल सेक्रेटरीट जी क़यादत कंदो। मका मुआहिदे तहत इतिहाद जो जनरल सेक्रेटरीट रियाज़ में क़ाइम कयो पियो वञे।
1: पाक फ़ौज अफ़गान तालिबान रजीम जा ड्रोन हमला नाकाम बणाए छॾिया। अफ़गान तालिबान रजीम तरफ़ां 8 ड्रोन्स पाकिस्तान जी फिज़ाई हदनि में दाख़िल थिया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि पाक फ़ौज जी एयर डिफेंस सिस्टम ख़बर पख़्तूनख़्वा में अफ़गानिस्तान खां आयल 8 ड्रोन्स खे किराए तबाह करे छॾिया। अफ़गान तालिबान अवामी हंधनि खे निशानो बणाइण वारी बुज़दिलाणी कोशिश कई। कुरम सेक्टर मां फितनतुल ख़ारिजीन जे मुल्क में दाख़िल थियण जी कोशिश बिना काम। पाक फ़ौज जी जवाबी कार्रवाई बाद अफ़गान तालिबान पोस्टूं छॾे फरार थी विया।
0: सिक्योरिटी फोर्सिस जो कोयटा जे इलाइक़े शाबान में ऑपरेशन फायरिंग जी ॾे वठि में फितना हिंदुस्तान जा 13 दहशतगर्द मारिजी विया। आई एस पी आर मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जा केतिरा ई ठिकाणा बि तबाह कया। हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ आयो। दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे ताईं क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी रहंदो।
1: न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सां बिल गेट्स जी मुलाकात। पोलियो जे ख़ात्मे, माउ ऐं ॿार जी सिहत समेत मुख़्तलिफ़ शोबनि में सहकार ते ॻाल्हियूं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मां पोलियो जे मुकमल ख़ात्मे लाइ जो अज़म वरिजायो। बिल गेट्स वज़ीर आज़म जी क़यादत में पाकिस्तान जे पोलियो ख़ात्मे लाइ कोशिशुनि जी वाखाण कई।
0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पारां वालर अल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि जी मज़म्मत। इसहाक़ डार चयो त वालर अल कश्मीर में आबादी तब्दील करण जी कोशिश थे पई। आलमी बिरादरी कश्मीरनि सां कयल वायदा पूरा करे। अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपनि ते ॻणती आहे। अफ़ग़ान सरज़मीन पाड़ेसरी मुल्कनि ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस। जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ा मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफ़ा मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी।
9: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331-252-5786।
7: जी हा, 3135-5576।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हाफिज के तपे हिजर में सौ साल थी पचंदो जा मरी भी दूध सण लायत कदम
1: जानम तू अची अची अची न अची जानम तुझे इंतजार मां बाहूं कढूं तकाफिर तू अची अची अची न अची जानम तुझे इंतजार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं सच ए खुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे सच ए खुशबूअ जो मौत त थियणो ई नाहे इन ई ऐतबार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं इश्क जे असरार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं चंड जे प्यार मां बाहूं कढूं त गुनहगार थियूं।

दोस्तों एक रोमांटिक प्यार भरियो मोहब्बत जो एहसास खूबसूरत गीत अचो तो गजी एंजॉय क्यों है दिल ते ना वो तो जो बेजो लिखा तो काफिर।

मैं कर रहा हूं इकट्ठे दुनिया के तमाम रंग, मैं कर रहा हूं इकट्ठे दुनिया के तमाम रंग, उसकी आंखों का सदका उतारना है मुझे। वो लाख गुस्से में बोले उठ के जाता नहीं, वो लाख गुस्से में बोले मैं उठ के जाता नहीं, मुझे पता है फिर उसने पुकारना है मुझे।

मुझे पानी में उतरने का इशारा करके मुझे पानी में उतरने का इशारा करके का चांद समंदर से किनारा करके। मुझे पानी में उतरने का इशारा करके जा चुका चांद समंदर से किनारा करके। और तजर्बा एक ही काफी है इबरत के लिए, तजर्बा एक ही काफी है इबरत के लिए, मैंने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके।

हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। हिजरत के अलावा, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। दो बोल मीठे नहीं थे हमको मयसर, दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयसर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मयसर, यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था। उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था, उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा था मुझको, हालांकि मुझे जान से मारा भी नहीं था।

बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे। बातों बातों में ही बातों से निकल जाएंगे, हम दिनों से तेरी रातों से निकल जाएंगे, जिंदगी तू हमें बस ढूंढती रह जाएगी, जिंदगी तू हमें बस ढूंढती रह जाएगी, जिंदगी हम तेरे हाथों से निकल जाएंगे।

जी दोस्तों, वक्त थियो आहे हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विहंदासीं, अवां जूं फोन कॉल्स बि अटेंड कंदासीं, अवां सां थोरो सारियूं ॻाल्हियूं बि कंदासीं, दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, कचहरी कंदासीं, त पोइ वापसि विहंदासीं हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे. इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस. बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस. निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं. हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली. राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-01-287. सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम.
5: हर ॿार जा नंढड़ा क़दम हिकु नई दुनिया ॾांहुं वधनि था, पर पोलियो इन्हनि क़दमनि खे रोके बि सघे थो. इन्हीअ करे जॾहिं बि पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करनि जी दस्तक थिए त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
7: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316.
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 0300-2962-435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
6: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
10: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
10: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
11: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
12: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
13: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
12: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
13: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
12: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
13: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
12: 0331-252-5786।
13: जी हा, 2311-5525-786।
12: GFM रेडियो नेटवर्क,
13: सिंध जो आवाज़।

0: ਦਾ ਡੋਹੀ
1: ਥੋੜੀ ਰਸ ਵਧੀਕ ਆਏ
2: ਲੱਖ
1: ਕੁਰਬ
2: हा बाकी शामिल न थियण में फर्क न आहे बगैर वक्रीअ जो प्रोग्राम ॿुधजे
1: बसि मां बि इहो ई चवण वारो हुउमि अवां मुंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि करे वरिती इन खे ई त दिलि जी ॻाल्हि चइबो आहे मुंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि इहो त कॉल मिले न जेकॾहिं अव्हां जो साथ रहंदो न मूंखे ख़बर पवंदी त मां त हिकु त जेको आहे त मतिलबु हूअं त कुंड चवां पर कुंड न आहे मां त मतिलबु सिंध जे टे वॾे शहर में वेही करे मां अव्हां सॼण लाइ ही प्रोग्राम जेको आहे सखर स्टेशन खां करे रहियो आहियां त इन उमेद दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि सिंध जी कुंड कुड़ुच में ॿुधी रहिया आहिनि त पोइ जेकॾहिं अव्हां रेडियो त न हूंदो फ़क़ति जेको आहे त फोन कॉल ते हूंदो ऐं कॉल जंहिंजी न मिले उहो रेडियो बि न ॿुधे त पोइ मज़ो कोन ईंदो ही प्रोग्राम अव्हां कॾहिं कहिड़े ॾींहं ते
2: मक़सदु त माना तव्हांजा प्यारा माण्हू छा अॻु में असांजा मुखातिब
1: हुजनि
2: पर आया त दुरुस्त आया माशाल्लाह
1: वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी
2: भेटाई घुरिजे भेट अर्ज़ु आहे साईं
1: जी कया
2: त माण्हू सभु न सुहिणा पखी सभु न हंझ
1: वाह वाह
2: माण्हू सभु न सुहिणा पखी सभु न हंझ के के माण्हू मंझि अचे पियो बहार जी
1: साईं लख थोरा
2: उहे इंसान वारी ख़ुशबू अवां मां अचे थी साईं अवां जो प्यार ख़ुलूस माशाल्लाह कहिड़ी ॻाल्हि कयूं जेकी ख़ुशबू अवां मां अचे थी साईं अवां जो प्यार

जी दोस्तों, बैक टू बैक कॉलिंग जो सिलसिलो जारी आए तो मां भी अवां के इंतजार कराण कोन तो पुछा है, कॉल शामिल कंदा से प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, केयर साईं किथां खां? हेलो हेलो प्यारा, अवां जी कॉल कनेक्ट थी चुकी है।

जैसे ताईं अवां जी कॉल कनेक्ट थे तेसि ताईं ब्रेक ते वञण खां अॻ में अवां जी हिकड़ी फरमाइश हुकुम जी तामील कंदे सनम बारवी जी खूबसूरत आवाज में गीत ॿुधूं अछो तकर जी हिन म्यूज़िक मां इंजॉय थियो।